सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। प्रातः के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, देते हैं हम आज आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। शीर्षक होगा मन की ऊर्जा। अक्षय निधि कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम 7:20 से सुना जा सकेगा। प्रातः 8 का समय होता है वतन का राग कार्यक्रम सुनने का। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा सितांशु दत्त राय पर। नशे का साथ जिंदगी का नाश, बाल सभा कार्यक्रम में होगा आज का विषय। प्रसारण समय 8:30। कारगिल युद्ध का भाग दो आज आप सुनेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से, कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में। इस कार्यक्रम को सुबह 9 हम प्रसारित करेंगे। 9:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम श्रद्धांजलि देंगे पंडवानी गायिका तीजन बाई को। दिन में 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। आज का विषय भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। 10:30 का समय होगा कार्यक्रम आजाद हिंद का। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा असित भट्टाचार्य पर। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दिन में 11 से। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा जिन्हें आज आप हमारे केंद्र से सुनने वाले हैं। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: हमारी उम्र बढ़ना जैविक प्रक्रिया है, लेकिन खुद को उम्र से पहले बूढ़ा महसूस करना मन की स्थिति से जुड़ा है। आज के युवाओं में ये सामने आया है कि तनाव में युवा खुद को अधिक थका हुआ, कमजोर, उम्रदराज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जीवन पर उनका नियंत्रण कम हो गया है। पर तनाव किसी स्थिति या घटना से उत्पन्न वो प्रतिक्रिया है जो हमारे शरीर और मन पर दबाव डालती है। कामकाज का बोझ, परिवार में समस्या, बीमारी, आर्थिक चिंताएं और रिश्तों की उलझनें इसके सामान्य कारण हैं। जब ये लगातार बना रहता है तो ये हमारी मनोवैज्ञानिक उम्र को प्रभावित करने लगता है। इसी वजह से युवा भी कभी कभी समय से पहले बूढ़े होने जैसा अनुभव करते हैं। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है कि मन ही शरीर का मुख्य संचालक है। जब मन अस्थिर होता है तो शरीर, भावनाएं और अनुभव भी असंतुलित होने लगते हैं। योग सूत्र के अनुसार भी चिंता और क्लेश मन को विचलित कर देते हैं। ऐसे में सहजता को समझना जरूरी है, क्योंकि असहजता हमें अस्थिर और अशांत बना देती है। कुछ मिनट गहरी सांस लेने पर ध्यान देना, स्क्रीन से ब्रेक लेना, प्रकृति के साथ समय और कृतज्ञता का अभ्यास, ये छोटे छोटे कदम मन को शांत करते हैं और ऊर्जा वापस लाते हैं। मन शांत हो तो ऊर्जा, खुशी और हल्कापन अपने आप लौट आता है।
1: जीवन सौरभ।
0: नब्बे 90.8 पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अवह परेण पितरम यो अस्यानुवेद पर एना वरेण कवीयमानः क इह प्र वोच देवं मनः कुतो अधिप्रजातम्। जो द्युलोक से नीचे पर स्थित अग्निदेव को जानते हैं, उपासना करते हैं, वे निश्चित ही

0: जसो वहन्ति। इस गतिशील विश्व में जो पास आते हुए को दूर जाता हुआ भी कहा जाता है, अनुभव किया जाता है, और दूर जाते को पास आता हुआ भी कहा जाता है। हे सोमदेव, आपने और इंद्रदेव ने जो चक्र चला रखा है, वह धुरे से जुड़ा रहकर लोगों को वहन करता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। साथ रहने वाले मित्रों की तरह दो पक्षी, गतिशील जीवात्मा एवं परमात्मा, एक ही वृक्ष प्रकृति अथवा शरीर पर स्थित हैं। उनमें से एक जीवात्मा स्वादिष्ट पीपल अर्थात माया के फल खा रहा है, दूसरा परमात्मा उन्हें न खाता हुआ केवल देखता दृष्टा रूप में रहता है। यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषम् विदथा भिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश। इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठी हुई संसार में लिप्त मरण धर्मा जीवात्माएं सुख दुख रूपी फलों को भोगती हुई अपने शब्दों में परमात्मा की स्तुति करती हैं। तब इन लोकों के स्वामी और संरक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त मुझ जीवात्मा में भी विद्यमान है। यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे तस्ये दाहुः पिप्पलम् स्वादग्रे तन्नो नषद्यः पितरं न वेद। इस संसार रूपी वृक्ष पर प्राण रस का पान करने वाली जीवात्माएं रहती हैं, जो प्रजा वृद्धि में समर्थ हैं। वृक्ष के ऊपर मधुर फल भी लगे हुए हैं। जो पिता परमात्मा को नहीं जानते, वे इन मधुर सत्कर्म रूपी फलों के आनंद से वंचित रहते हैं। यद् गायत्रे अधि गायत्र माहितम् त्रैष्टुभाद्वा त्रैष्टुभम् निरतक्षत यद्वा जगज्जगत्याहितम् पदम् य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः। पृथ्वी पर गायत्री छंद को, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद को तथा आकाश में जगती छंद को स्थापित करने वाले को जान लेता है।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

भगवान की भक्ति स्वयं फल रूपा है। वह भक्तों के हृदय में शांति, तृप्ति, संतोष और आनंद का अनुभव कराकर हृदय को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है।

भक्तों को काल का भरोसा ना करके सदैव भगवान की शरण में जाना चाहिए। उनके चरण कमलों में मन को मधुकर की तरह समर्पित करने की बात कही गई है। भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेना चाहिए।

सांसारिक इच्छाएं हमें अशांत करती हैं। सब ईश्वर की कृपा समझने पर हम जीवन के केंद्र से जुड़ जाते हैं, ईश्वर के समीप हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि हम प्रेम पथ पर चलने का संकल्प करें।

हम इस नश्वर संसार में दुखी करने वाले विचारों को समझकर उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करें और जितना जल्दी हो सके भगवान की शरण में आ जाएं। हमें सांसारिक इच्छा अहंकार से मुक्त होना है। जीव को परमात्मा से मिलाने के लिए प्रेम सेतु है। सदाचारी ही प्रेम सेतु पर चलने वाला हो सकता है।

जैसे नया चंद्रमा कुमुद और चकोर दोनों को सुख देता है, जैसे कुमुद तन से और चकोर मन से प्रसन्न होता है, वैसे ही प्रभु के भक्त प्रभु की भक्ति को पाकर उन्हें गाकर तन मन से सुखी स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं।

भक्ति रस भक्तों के हृदय में तब बहता है जब वे प्रेम से उसमें डूब जाते हैं। इसकी धारा में सारे कलुष धुल जाते हैं और हृदय आनंद से सदा भरा रहता है। हमारे मन का अवसाद और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं।

यदि मनुष्य लगातार प्रेम भक्ति के रास्ते पर चलता रहे तो एक न एक दिन परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। कार्यक्रम भक्ति संगीत की ये अंतिम भक्ति रचना।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता इस समय सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, ये था आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम। इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

प्रातः के 8 बजे है। हमारा अगला कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे कुछ ही पलों में। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा सितांशु दत्त राय पर।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूं जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य, सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
2: नमस्ते मैम।
0: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
2: मैम मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
0: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
2: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
0: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
2: जी,
0: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
2: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
0: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
2: जी।
0: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
2: जी,
0: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
2: जी,
0: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
2: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं दादी जी,
0: जी,
2: तो उनकी तबीयत खराब थी तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जभी से हुई।
0: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
2: जी,
0: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
2: जी,
0: यही कहा था आपसे,
2: जी,
0: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
2: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
0: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
2: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
0: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है, ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
2: जी ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
0: क्या हुआ फिर?
2: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
0: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
2: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
0: जी।
2: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
0: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
2: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
0: जी।
2: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
0: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
3: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम प्रीति है।
0: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
3: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रहे कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी, लेकिन छोटी थी तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है। और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया। तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पे काम करना था। लेकिन पापा उसी टाइम पे पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर आए थे। तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है। फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
2: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से, अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
3: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
2: जी।
3: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं। जब हम देखते कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
2: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से, इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं, और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना।
0: एलेक्स आप भी। तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
2: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई, और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा, और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी, और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
0: में तब्दील हो गई,
2: बड़े नशों में तब्दील हो गई, और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो, और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय, और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो, मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज, मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
0: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
2: जी,
0: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
2: जी,
0: सब तरफ अंधेरा है, दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेल्यूसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहां से लौटना मुश्किल हो वहां जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है, है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
2: जी,
0: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
2: जी, बिल्कुल
0: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
2: जी,
0: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो रही होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटे तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
3: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई, बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
0: कोई तो सुने, पहली बात
3: कोई तो सुने, बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन है अब इसका असर उन पर
0: ना जाए।
3: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पर जाना शुरू हो गया, जैसे कि कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
2: मेरा पैसा मैं
3: मेरा,
2: कुछ भी करूं।
3: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th थी। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
2: हद में रहो,
3: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला, गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
2: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदी हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बालसभा मुझे लगता है कि सिर्फ बालसभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
4: जी बिल्कुल
2: आ सकता है।
4: जी जी
0: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। हमारा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं हमारी भारतीय सेना से जुड़े हर उस पहलू को जिसे हम आम नागरिकों को जानना बेहद जरूरी है, आवश्यक है, ताकि गर्व कर सकें हम अपनी भारतीय सेना पर, जिसके कारण आज हमारा राष्ट्र चारों दिशाओं से सुरक्षित है, महफूज है। श्रोताओं, राष्ट्र की संप्रभुता, सम्मान और सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सेना के वीर सेनानियों के बलिदान और पराक्रम की गाथाओं से देश का इतिहास लिखा गया है, और वर्तमान में भी, यानी आज जब हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये हम कभी ना भूलें कि सरहद पर 24 घंटे हमारी इन सांसों की निरंतरता के लिए कोई सैनिक चौकन्ना है, तैनात है। भारतीय सेना के इन्हीं वीर चौकन्ने और मुस्तैद सिपाहियों की एक गौरव गाथा, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं या जिसे कारगिल युद्ध के रूप में पहचानते हैं, इसकी चर्चा कार्यक्रम में हम इन दिनों कर रहे हैं। श्रोताओं, कारगिल की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। ऊंचाई पर दुश्मन का बैठा होना, हमारी हर गतिविधि पर उसकी नजर होना, दुश्मन की संख्या क्या है, उनके पास हथियार किस तरह के हैं और कितने हैं, इसका सही अनुमान न लगा पाना, माइनस से भी कई डिग्री नीचे का तापमान, ऑक्सीजन की कमी और तीखी चढ़ाई पर बिना आड़ के दुश्मन की नजरों से बचते हुए रातों में इंच दर इंच आगे बढ़ना, ये सारी परिस्थितियां बेहद ही चुनौतीपूर्ण थी। फिर भी हमारे जाबाज सेना के वीरों ने बड़ी ही शौर्य और पराक्रम से कारगिल की उन चोटियों को वापस लिया और उन पर अपना तिरंगा फहराया। तोलोलिंग की लड़ाई, जिसका कि जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, उस पर फतह बेहद ही दुष्कर थी, लेकिन तोलोलिंग को वापस पाने के बाद इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट आया। आइए एक बार हम रुक करते हैं फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की ओर, जो स्टूडियो में एक बार फिर हमारे बीच हाजिर हैं कारगिल की गौरव गाथा को हमारे साथ साझा करने के लिए। सर, एक बार फिर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं।
4: जय हिंद सर।
5: पूर्वा जी,
4: जी
5: आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में
4: जी
5: जिस तरह से आपने वो बताया है
4: जी,
5: बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी
4: जी जी जी,
5: टेम्परेचर माइनस में, बिल्कुल सीधी चोटियां जो है, डोमिनेटिंग हाइट्स पे दुश्मन का होना
4: जी,
5: और उनका जो हमारी मूवमेंट में लगातार इंटरफेरेंस करना, एक तरह से मतलब बहुत ही दुष्कर ऑपरेशन था ये, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसमें जो सफलता मिली है वो सच में हमारे जांबाज बहादुर सिपाहियों का जोश था
4: जी, बिल्कुल सर,
5: और उनके अंदर एक जो अपने देश के लिए प्रेम था, देश प्रेम था
4: जी,
5: मैं कहूँ तो एक तरह से देखा जाए तो वो सर पे कफन बांध के निकले थे
4: जी, बिल्कुल सर,
5: जिस तरह से उन्होंने ये किया है
4: जी जी।
5: हमने जैसे पिछली बार जिक्र किया था तोलोलिंग का
4: जी,
5: निसंदेह तोलोलिंग को कैप्चर करना बहुत बड़ी जीत थी।
4: जी बिल्कुल सर।
5: अभी जो है बहुत कुछ बाकी था।
4: मेरी जानकारी है सर, ये तो पहला स्टेप था।
5: एग्जैक्टली ये तो पहली हाइट थी जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हाइट थी, हमने जो है कैप्चर करी। टू राजीव जैसे हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब आगे जो है और भी जो लोकेशन थी जिसमें कि एनिमी बैठे हुए थे, पाकिस्तानी बैठे हुए थे और इंटरफेयर कर रहे थे, हमारे ऑपरेशंस में भी इंटरफेयर कर रहे थे। तो जैसे तोलोलिंग के ठीक पीछे एक हाइट थी जो नॉर्थ में, उसको हम 0.5140 बोलते हैं।
4: आपने जो नंबर बोला तो ये नंबर जो है उस चोटी की ऊंचाई को बताता है।
5: एग्जैक्टली, ये उस चोटी की ऊंचाई को बताता है, उसके हिसाब से उसको हम नाम देते
4: हैं। उसी नाम से पुकारते
5: हैं। उसी नाम से पुकारते हैं। तो ये जो हाइट थी मतलब तोलोलिंग से भी ऊपर ऊपर है। एंड अगेन ये भी काफी बड़ा फीचर था, दुश्मन ने जो है इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां से अगेन वो डोमिनेटिंग हाइट पे था। तो तोलोलिंग को अगर हमको बरकरार रखना है तो इसको कैप्चर करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और आप ये समझ सकते हैं कि इतना मैसिव फीचर था कि उसके लिए एक बटालियन नहीं तीन बटालियन है, पूरी ब्रिगेड का लेवल का एक अटैक किया गया। उस फीचर पे जो है तीनों तरफ से तीन दिशाओं से जो एक साथ अटैक किया और उस अटैक में मतलब जो है पूरा जो डिवीजन था उसकी जितनी आर्टिलरी होती है मतलब और मोर्टर फायर होता है उसके सपोर्ट था। इंडियन एयरफोर्स ने जो है उससे पहले जो है टारगेट्स के ऊपर जो है बम्बार्डिंग करी थी और पूरा जो है फोर्स लगा था
4: जी।
5: और उसका कारण ये है कि ये इतने मैसिव फीचर्स होते हैं और उसमें आपको स्टीप क्लाइंब करके ऊपर जाना है, तो ये जरूरी है कि उससे पहले हमें ये फायर सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये जो मैसिव फीचर था इसके लिए बहुत बहादुरी से हमारे सिपाही लड़े, इंच इंच करके आगे बढ़े, तीनों तरफ से जो है डायरेक्शन से अटैक आया। और इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे जो 13 जैकरी बटालियन थी उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे, ये नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं,
4: बेहद मशहूर है
5: जी। ही वाज एक्सेप्शनली ब्रेव ऑफिसर जो फ्रंट से लीड करके इनिशिएटिव लेके हमेशा आगे जाते थे। तो ही एक्चुअली शोड एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन दिस अटैक बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उन्होंने जो है जो उनको ऑब्जेक्टिव दिया गया था उस पे कैप्चर करते समय

0: जब तक इनको निकाल नहीं दूंगा, मतलब जो है
1: बिल्कुल सर,
0: मुझे मेरा दिल तो हमेशा मांगता रहेगा कि हर मेरे को ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव लेना है। ही बिकेम ए हाउस होल्ड नेम अक्रॉस द कंट्री,
1: बच्चा बच्चा जानता है सर।
0: जी, उसके बाद ये और जितने और सोल्जर्स थे, बटालियंस थी, उन सब ने मिलके जो है फाइनली ये जो 0.5140 पे आखिरकार 20 जून को कैप्चर किया, कब्जा किया जो है। ये जब कब्जा होता है उसमें क्या होता है, आप ये देखिए कि जो मैसिव फीचर होते हैं जैसे, वो एक चोटी के ऊपर ही दुश्मन नहीं होता है, वो उसके आसपास छोटे छोटे
1: बिखरे
0: पोस्ट बनाई हुई होती हैं, तो एक एक करके जो है इनको कैप्चर करा जाता है, कैप्चर करके आगे बढ़ा जाता है, और हर स्टेप के ऊपर आपको एक नई लड़ाई लड़नी होती है, हर स्टेप के ऊपर नया चैलेंज होता है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से फिर फायर आ रहा है, उस बीच में रसद भी आ रही है, एमिनेशन भी आ रहा है पीछे से, आपके साथियों कैजुअल्टी हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल होता है जब आपके साथ जो लड़ रहा होता है सडनली यू फाइंड कि ही इज डेड। इट इज अ वेरी मतलब मेजर इंपैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी, एंड यू हैव टू रियली कंट्रोल योरसेल्फ एट दैट टाइम कि अभी 2 मिनट पहले था और अभी नहीं रहा, और उससे भी ज्यादा दुख होता है जबकि उसको गोली लगी हुई है और आपको उसको इवैक्यूएट भी करना है और सामने दुश्मन से भी लड़ना है। और ये इस युद्ध में सबसे ज्यादा था, उसका कारण जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दुश्मन को हम दिख रहे थे
1: वो हमसे ऊपर बैठे, उन्हें नहीं देख पा रहे थे,
0: हम उन्हें इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे थे जितना कि वो हमको देख रहा था, एंड उसको हाइट डोमिनेटिंग हाइट पे होने का एडवांटेज था। दैट्स व्हाई ये जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं, एंड हम उन हर सोल्जर की कुर्बानी के लिए उसके सामने नतमस्तक होते हैं।
1: बिल्कुल सर, नमन है हम सभी,
0: जी नमन है, जिन्होंने सर में सच में कफन बांध के जो है लड़ाई लड़ी,
1: जी बिल्कुल,
0: और उनके दिल में क्या होता होगा, दिल में कितना देश प्रेम था उन्होंने कि हमारे यहाँ पे आपने घुसपैठ किया है, हम आपको नहीं रहने देंगे, और उसको निकाला।
1: बिल्कुल सर,
0: तो मैं तो एक एक सोल्जर जो है जो भी रहे उनको सबको जो है सैल्यूट है हमारी तरफ से। इसी तरह से अभी हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अदर फीचर जो बहुत फेमस हुआ था आपको याद होगा, टाइगर हिल। अब टाइगर हिल जो है इट्स अ मैसिव फीचर जो कि उसके आसपास की जितनी पहाड़ियां अगर आप फोटो देखेंगे आपको दिखेगा बिल्कुल अलग से नजर आता है, बिल्कुल
1: सबसे ऊंची चोटी
0: बिल्कुल अलग से दिखती है और बहुत बड़ी है, मतलब 2.2 किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर फैली हुई ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ टू साउथ में, और ये जो है मतलब NH1 alpha जो हमारा जाता है तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर जो है नॉर्थ में थी, और वो मतलब जो चोटी है वो पूरा का पूरा NH1 alpha उस समय जो इसको डोमिनेट करती, जो श्रीनगर लिए रोड है उसको डोमिनेट कर रही थी
1: जी। और सर मैंने सुना कि दुश्मन के पास ऐसे हथियार थे जो 7-8 किलोमीटर दूर हमारे नेशनल हाईवे पर वो बम्बार्डिंग कर सकते थे।
0: जी, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आर्टिलरी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन से जो है पीछे अपनी जो आर्टी गन्स होती है उसका फायर लेकर आते हैं
1: जी,
0: तो ऑब्जर्वेशन क्योंकि इनको क्लियर था तो इस कारण से आर्टी फायर लाने में उनको बहुत मदद मिल रही थी, जो कि हमारी पूरी व्हीकल मूवमेंट थी उसमें इंटरफेरेंस होता था क्योंकि लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही होती थी तो मूवमेंट नहीं हो पाता था। और इस फीचर पे जो है कहते हैं पाकिस्तान आर्मी की नदन लाइट इन्फेंट्री थी, बटालियन थी, उसकी पूरी कंपनी की स्ट्रेंथ
1: तैनात थी।
0: अब अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता कि टॉप पे सब बैठे हों मिलजुल के, वो अलग अलग जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं जहां से दुश्मन के आने का मतलब खतरा है, मतलब अगर हम डिफेंस के हिसाब से देखें तो वो हर जगह पे मतलब छोटी छोटी पोस्ट बना के बैठे होते हैं, फैले होते हैं
1: जी।
0: तो आपको जब वहां तक पहुंचना है, उसको कैप्चर करना है, तो आपको एक नहीं अनेकों लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं
1: जी।
0: हर तरफ से मतलब जो है एक आप पोस्ट कैप्चर करते हैं, फिर उसको कैप्चर करने के बाद उसको फुटहोल्ड बना के दूसरी पोस्ट आगे बढ़ के कैप्चर करते हैं, तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे ऑपरेशन होते हैं, माउंटेन्स में समय बहुत लगता है। ये जो है अगेन इट्स अ मैसिव फीचर, और तब तक जो है टीवी ने भी इसमें मतलब न्यूज सीरीज में मतलब तकरीबन सब लोगों ने देखा था,
1: हाँ
0: तो एक बड़ा डिस्कशन था कि इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्या ये कैप्चर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक ये भी था कि ये तो भाई इतना मतलब मैसिव फीचर है कि इस पे बहुत मुश्किल है, असंभव सा काम है कि इसको जो है आप मतलब कैसे कर पाएंगे, बट फाइनली तो हमने कैप्चर किया। और इसके लिए जो बटालियन थी 18 ग्रेनेडियर्स और 86 जो थी उनके साथ आर्टिलरी थी, इंजीनियर्स थे, एक हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में, तो वहां से जो स्पेशली ट्रेन होते हैं वो लोग माउंटेन्स में
1: पहाड़ों पर
0: लड़ाई करने के लिए, तो उसके भी जो है स्पेशल टीम्स आई हुई थी इसके लिए। जब अटैक हमने 3 जुलाई को 18 रेडियस से शुरू किया था, उससे पहले जो है मैसिव आर्टिलरी बम्बार्डमेंट किया उसके ऊपर, IAF जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने स्ट्राइक्स करी थी, मिसाइल अटैक्स हुए थे, क्योंकि नहीं तो आप उस ऑब्जेक्टिव तक तो पहुंचना
1: भटकाने के लिए भी बहुत जरूरी था
0: जी, उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है ना, उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है। एक तो वो हमारे इलाके में घुसा हुआ है, मतलब हर तरह से हमारा हर, क्योंकि हम अपना इलाका हमारे घर में घुसा है, तो हम उनको निकालने के लिए कुछ भी कर सकते,
1: किसी भी कीमत पर जा सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें भी अगेन जो है मल्टी डायरेक्शनल अटैक लॉन्च करें जो है, और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया वही सेम, मतलब जो है स्टीप क्लाइम्स हैं, बहुत रगेड टेरेन है, इंटेंस फायर आ रहा है दुश्मन का डोमिनेटिंग पोजीशन से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक एक एक एक पोस्ट को क्लियर करते हुए जा रहे थे। एंड अगेन देखिए आप, इट इज नॉट कि ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लड़ाई है, घंटों लग जाते थे, मतलब रात से दिन हो जाता था, दिन होते थे तो मतलब जो है आप एक्सपोज होते थे, दुश्मन आपको देख रहा होता था। जो हमारे जवान है उनका मोटिवेशन देखिए कि वो भूखे प्यासे होते थे, ठंड में पड़े होते थे, उसके बावजूद जो है ना तो कभी उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, जहां तक वो आगे बढ़ गए वो फिर पीछे नहीं आए, कहीं पे भी वो पीछे नहीं आए।
1: सर मुझे तो ये सुनने में आया है कि वो अपने साथ अपना राशन ले जाने के बजाय गोलियां ले जाना ज्यादा प्रेफर करते थे, ताकि क्योंकि ऊपर चढ़ाई बहुत मुश्किल है।
0: बिल्कुल, खाना खाने का तो पता नहीं, लेकिन गोली होना जरूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर लड़ना है तो गोलियां जरूरी है, और वही उस समय हमको बचा सकती है जो है। तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो फाइनली जो है टीम कनेडियंस, दे रियली डिड अ वंडरफुल जॉब, एंड 4 जुलाई को दे अचीव्ड अ मेजर सक्सेस होल्डिंग दिस, ठीक है, ओके ग्राउंड, उन्होंने जो है इसको कैप्चर किया जी। है, अब ये था कि इसको कैप्चर करने के बाद जो दुश्मन था उन्होंने लगातार काउंटर अटैक किए
1: जी वापस पाने के लिए।
0: तो इसमें भी जो है मतलब ये बैलेंस जो है अपने इनके जो जवान है तो लड़ते रहे, कंटिन्यूअसली लड़ते रहे, उस जगह को
1: छोड़ा नहीं
0: जी। एक बार आया तो नहीं छोड़ा। यहाँ पे अपन जिक्र करते हैं, मतलब ये जो अटैक हुआ था
1: जी जी,
0: इसमें अगर आपको याद होगा उस समय जो ग्रेनेडियर्स थे योगेंद्र सिंह यादव
1: जी सर,
0: है ना
1: जी, नाउ इज ऑनरेरी
0: जी, ऑनरेरी कैप्टन, जिन्होंने की बहुत ही एक्सेप्शनल बहादुरी दिखाई
1: जी,
0: दिखाया इस अटैक में, उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा
1: जी, बिल्कुल सर बिल्कुल।
0: वो क्या था कि जब ये अटैक हो रहा था तो हमारी घातक प्लेटून होती है, घातक प्लेटून मतलब इट्स लाइक ए कमांडो प्लेटून जो बटालियन में होती है, छोटी सी होती है, जिसके की लोग बहुत ही फिजिकली फिट होते हैं, ट्रेन होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि ये ऐसे दुर्गम इलाकों में उनको डिप्लॉय किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। तो जो योगेंद्र सिंह जी थे वो इस घातक प्लेटून के मेंबर थे, वो इसका हिस्सा थे, तो जिसका काम दिया गया था कि टाइगर हिल टॉप पे आपको जाके कैप्चर करना है, क्योंकि स्टीप क्लाइम था, तो इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा सबसे आगे और जो है रस्सी ले जाके उसको फिक्स भी करूंगा। तो इन्होंने जो है वॉलंटियर करके आगे बढ़े और फिक्स करते हुए रोप फिक्स करते रहे, क्योंकि बहुत स्टीप था, जिसकी मदद से जो बाकी टीम भी ऊपर चढ़ती गई। तो जैसे ही टॉप पे पहुंचे हैं दुश्मन को भनक लग गई कि भनक लगी तो उन्होंने देखा तो उनको दिखा और उन्होंने बहुत जो है हैवी इंटेंस फायरिंग इनके ऊपर शुरू करी। वो इतनी इंटेंस थी कि जो टीम लीडर थे और साथ में जो 2 सोल्जर और थे घातक प्लेटून के वो वहीं शहीद हो गए। इतना फायर आ रहा था तो उसके कारण जो है मूवमेंट स्टॉल हो गया एक तरह से। तो फिर से जो है योगेंद्र सिंह ने मतलब ही टुक द इनिशिएटिव, धीरे धीरे क्राउल करते हुए आगे गए और जो दुश्मन का जो संगर था उसमें उन्होंने अटैक किया और वहां पे जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स थे तो उन्होंने लगातार उनको फायरिंग करके एंड उनके साथ लड़ते हुए ऑलमोस्ट ही किल्ड एवरी वन ऑफ देम, 4-5 जो थे
1: जी।
0: अब इनके जो एक्शन से क्या हुआ कि वो जो मशीन गन फायर हो रही थी वो शांत
1: वो बंद हो गई।
0: तो जब वो बंद हुई तो बाकी जो टीम थी उनको मौका मिला तो उन्होंने भी आगे बढ़ के एंड बाकी जो बंकर्स संघर्ष जो थे उसके ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया एंड फाइनली द टीम सक्सीडेड, प्लेटून सक्सीडेड और जो है इन्होंने टाइगर टॉप पर कब्जा किया था
1: जी।
0: अब इसमें जो है योगेंद्र सिंह जी को काफी खुद को भी बुलेट इंजरीज हुई थी।
1: मैंने सुना सब 15 बुलेट्स थी
0: जी, उनको काफी मतलब जो है दानाद में गोलियां लगी थी। लेकिन देखिए फिर भी उनका आप हौसला देखिए
1: जी जी,
0: इतनी बुलेट लगी है ना तो वो पीछे हटे ना उन्होंने इवैक्यूएशन होने का वो किया कुछ भी किया, लेकिन वो लड़ते रहे वहां पे जो है
1: जी।
0: एंड राइटफुली फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी इनिशिएटिव एंड करेज, ठीक है, ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द कंट्री, परमवीर चक्र उनको मिला
1: जी।
0: और ये आप अगर देखें कि हर एक जो सोल्जर था जो गया है 18 ग्रेनेडियर्स के, हर सोल्जर्स ने अपने जो है पूरी बहादुरी और जांबाजी से अपना कार्य किया था। हाँ ये जरूर है कि उसमें कुछ जो हटके इन्होंने किया वो बहुत ही ज्यादा था
1: जी। ये तो बिल्कुल असाधारण काम,
0: असाधारण काम,
1: ये हम सोच ही नहीं सकते ना कि एक मनुष्य होकर इतना जज्बा रख लेना 15 गोलियां खाने के बाद भी
0: जी
1: अपनी बहादुरी पूरी की तरह से देश प्रेम के लिए बिल्कुल उड़ेल के रख देना सर।
0: और इनिशिएटिव देखिए आप, मैं आगे जाऊंगा,
1: हाँ जी
0: मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के बाद जो है मैं ये कार्य करूंगा
1: जी,
0: तो राइटफुली मतलब एंड ही इज ऑनरेरी कैप्टन जो है और ही डिजर्व्स अ रियल सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस।
1: असली कारगिल हीरो हैं सर
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर हिल तो इन्होंने लिया
1: जी,
0: जो है जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि उसके आसपास भी जो पोस्ट थी अब वो उनसे इंटरफेरेंस हो रहा था, तो वहां से भी फायरिंग कर रहा था
1: जी।
0: तो उनकी जो बाकी पोस्ट थी जहां से कि उनकी रसद भी सप्लाई हो रही थी और जहां से उनका रीइंफोर्समेंट भी आ रहा था
1: जी,
0: उसको रोकना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए जो 86 बटालियन थी साथ में उनको टास्क दिया गया। अब अगेन वहां से उन्होंने जो है अटैक करके जो बाकी जो पोस्ट थी उनको कैप्चर किया। अगेन मैंने तो एक लाइन में बोल दिया है लेकिन सच में यकीन मानिए एक लाइन का एक सेकंड का काम नहीं था,
1: बहुत दुष्कर है,
0: बहुत ही दुष्कर थे जो है इस पे चढ़ना। अगेन मतलब जो है इट्स एक्चुअली नीड्स लॉट ऑफ करेज एंड डिटरमिनेशन, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन होते हैं वो जो है वहां पे उसी को समझ में आता है। एंड उनको काफी कैजुअलिटीज भी हुई इनकी जो है, बट वो अगेन दे वर एबल टू कैप्चर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू देम। उसके बाद दुश्मन ने काफी मेजर काउंटर अटैक्स भी किए रिगेन करने के लिए, लेकिन ये जो सिख रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे सिख के, वो अपनी पोस्ट पे डटे रहे। उन्होंने तो एक इंच भी जमीन वापस नहीं करी, जो ले लिया वो तो फिर हमारा है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी, है ना। तो ये जो मैसिव फीचर था इसको जो हमने कैप्चर किया था
1: जी,
0: तो इट वाज एक्चुअली सच ए बिग सक्सेस फॉर द आर्म फोर्सेस कि इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन।
1: जी बिल्कुल सर,
0: इनफैक्ट एवरीबॉडी सेलिब्रेटेड इट, ठीक है, एंड इट वाज ए मेजर लॉस टू पाकिस्तान, ठीक है, इट वाज ए मेजर ब्लो टू देम, ठीक है, ओके। अच्छा पाकिस्तान का तो ये हाल था कि वो ये मानने से भी इनकार कर रहा था कि कोई टाइगर हिल नाम की फीचर है या उनकी आर्मी वहां पे है
1: मौजूद
0: है, जो है तो 8 जुलाई को हमारा तिरंगा
1: जी
0: 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पे लहराया एंड वाज अगेन ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। एंड ये जो विक्ट्री थी इससे काफी कुछ जो है हमें सक्सेस मिली और ड्रास सेक्टर में जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया। वो जो मेजर पोर्शन था तोलोलिंग टाइगर हिल और उसके बाद ये जो
1: जिसके बाकी हमारा नेशनल हाईवे खतरे में था,
0: काफी बड़ा हिस्सा जो है हमने चेक किया।
1: सर यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो द्रास क्षेत्र है उसके अलावा भी कोई ऐसी जगह थी जहाँ से दुश्मन हमारे यहाँ घुस आए थे और वहाँ भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी?
0: जी हाँ बिल्कुल, द्रास तो एक सेक्टर था बीच में
1: जी,
0: अगर आप देखें तो उसके वेस्ट में यानी कि द्रास और जोजिला जो पास है के बीच में मशको वैली आती है, वहां पे भी इन्होंने जो है पाकिस्तानियों ने घुसपैठ करी थी।
1: अच्छा,
0: और ये तकरीबन NH1 alpha जो रोड है उसका 30 किलोमीटर तक का जो एरिया था
1: जी
0: उस पे वो डोमिनेट कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: और उसमें वहां पे भी उन्होंने कुछ मेजर हाइट्स थी जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था।
1: अच्छा,
0: और अगर हम द्रास के आगे मतलब सियाचिन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, कारगिल से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए द्रास आता है, द्रास का कारगिल आता है, फिर उसके बाद आगे जो है चोरबाटला बटालिक सेक्टर आता है, तो वहां पे भी घुसपैठ इन्होंने करी थी और वहां पे भी जो है इन्होंने कुछ हाइट्स वगैरह थी जिन पे कैप्चर किया हुआ था। तो अब एक एक करके जो है और कई जगह एक साथ जो है हर जगह जो है इंडियन आर्मी लड़ रही थी और इनको वहां से निकाल रही थी, खदेड़ रही थी, पीछे हटा रही थी। अभी क्या हो रहा है कि जब हम अपने एपिसोड्स में जो जिक्र करते हैं,
1: जी जी जी,
0: हमने कुछ खास जगह के बारे में ही हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन और भी जो है काफी जगह है और काफी सारी बटालियंस भी थी। अभी हमारे सामने तो कुछ ही बटालियंस का नाम आता है जिनका हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने हम आप यकीन मानिए जितनी हम बात कर रहे हैं उससे कम से कम नहीं तो 3 से 4 गुना ज्यादा फोर्सेस थी सिर्फ इन्फेंट्री की।
1: जी सर, ऐसा बोला जाता है ना कि यदि हम युद्ध लड़ते हैं और हमें जीतना है तो 1:3 का रेशियो होना
0: चाहिए, तो होना ही होता है।
1: पहाड़ी पर हो जाती है ये चीज तो 1:15 तक चले जाते हैं।
0: यू आर राइट, डिपेंड करता है। देखिए ना, अभी हमने जिक्र किया था टाइगर हिल का, तो उसमें जो है एक कंपनी के अगेंस्ट 3 बटालियंस गई थी। काफी आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला।
1: एक प्रश्न और भी मेरे मन में आता है सर, ये हम एपिसोड इसको समाप्त करें इसके पहले, कि तोप का उपयोग इस युद्ध में, कारगिल युद्ध में विशेष रूप से बहुत अधिक हुआ और मतलब सदुपयोग किया गया उसका, तोप का, और चर्चित नाम बोफोर्स का उपयोग, क्या पहली बार हुआ है इस तोप का उपयोग?
0: नहीं, ये तो देखिए बोफोर्स हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें एक जो बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी थी वो था डायरेक्ट फायरिंग वेपन से। क्या होता है जब आर्टिलरी फायर होता है, इट इज अ पैराबोलिक जो दूर जाके जो गिरता है। इसमें क्या हुआ था कि हमें जो सामने दिख रहा था बंकर, जो संगर दिख रहे थे, उसमें मतलब आर्टिलरी शेलिंग इस तरह से हुई थी कि ये डायरेक्ट फायर किया था, तो ये एक अलग तरह से उपयोग था। दूसरा, इसमें जो है काफी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था जो फायरिंग में, बहुत सारी गन्स वगैरह का एक साथ इस्तेमाल हुआ था, तो उसका जो इम्पैक्ट था हमें समझ में आया था कि आर्टिलरी कितना मतलब डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तो वो एक हम लोग को एक लेसन सीखने को मिला था। यू आर राइट, इसके कारण जो है बोफोर्स काफी उसका नाम आया था,
1: बहुत चर्चित हुआ था,
0: बहुत चर्चित हुआ था, एंड इट इज अ वेरी गुड गन।
1: सर, सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग बात ये लगती थी कि इन तोपों को वहां तक ले जाना, युद्ध भूमि तक ले जाना बहुत बड़ी चुनौती था।
0: जी हाँ, वो तो है। दूसरा क्या होता है कि जब आप फायर होता है, आर्टिलरी फायर होता है, तो उसकी जो लोकेशन होती है गन की, वो इमीडिएटली दुश्मन पता कर लेता है। तो उसके लिए क्या होता है कि इमीडिएटली गन्स को मूव करना होता है, क्योंकि काउंटर बम्बार्डमेंट आएगा आपके पास, दोबारा अटैक होगा, तो उसके लिए ये जो गन्स होती है फोर्स, क्योंकि इनके पास मोबिलिटी है, ये भी एक कारण था कि उसके कारण काफी है
1: सफल रही है,
0: क्योंकि इनके पास अपना जो है कैपेबिलिटी होती है मूवमेंट की होती है, तो फायर करने के बाद
1: एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
0: जी, दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस गन।
1: तो सर, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम आम इंसान इन सब चीजों को जान सके। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, युद्ध जीतना और तिरंगा फहराना तो हमने देखा है टीवी पर और सब, लेकिन इसके पीछे जो एक कहानी है, जो एक गौरव है, जो एक पराक्रम है, उसी को हम उजागर करना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के से।
0: बहुत ही अच्छा बोला आपने, जैसे सिर्फ जो लड़ रहे हैं
1: जी,
0: उनके साथ एक बहुत एक इंसान होता है जो पोर्टर्स होते हैं, सिविल पोर्टर्स होते हैं, जो एमिनेशन कैरी करते हैं, राशन कैरी करते हैं, वो वहाँ के लद्दाख के लोकल्स होते हैं,
1: उनका भी उतना ही बड़ा योगदान,
0: उनका बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी,
0: क्योंकि वो अगर एमिनेशन लेके जाना, रसद लेके जाना और कैजुअल्टी इवन इवैक्यूएशन में मदद करना, दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी मेजर रोल। तो उसी तरह से बाकी जो है इसमें इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स है, कम्युनिकेशंस डेवलप करना है, ऑर्डिनेंस का काम है, एमिनेशन सप्लाई करना है, राशन सप्लाई करना है, तो इट इज अ वेरी कोहेसिव काइंड ऑफ जॉब,
1: सबका समन्वय है,
0: समन्वय है, तो ईच एंड एवरी वन मतलब जिन्होंने काम किया इसके लिए वो सभी तारीफ के काबिल हैं।
1: ऑपरेशन विजय जो है इन्हीं की विजय है,
0: बिल्कुल इनकी विजय है, 100% इनकी विजय है।
1: तो श्रोताओं, ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहाँ हर परिस्थिति, हर बात दुश्मन के पक्ष में थी, लेकिन युद्ध का परिणाम दुश्मन के पक्ष में नहीं रहा। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के पराक्रम का परचम एक बार फिर बुलंद किया, जो शुरू हुआ था छल कपट और विश्वासघात की बुनियाद पर, लेकिन खत्म हुआ भारतीय सेना के वीरता, विश्वास और विजय के साथ। ये लड़ाई जमीन के एक टुकड़े की जंग नहीं थी, ये जंग थी देश के अभिमान की, स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की। ये जंग थी दुश्मन को उसकी हदें बताने की, हमारी सरहदों की रक्षा की। इस युद्ध की बातें आगे भी जारी रहेंगी हमारे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। धन्यवाद सर इस कार्यक्रम के लिए।
0: जय हिंद पूर्वा एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: जय हिंद सर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मेरे साथ थे लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सेवानिवृत्त, जो हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे थे, और मैं थी आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करने जा रहे हैं विश्वविख्यात पंडवानी लोकगीत और नाट्य की मशहूर कलाकार तीजन बाई जी को, जो अब हमारे बीच नहीं रहीं।
1: कभी भी याद करोगे तो आप लोगों के पास हम दौड़े चले आएंगे।
0: तीजन बाई जी का जन्म हुआ 8 अगस्त 1956 को दुर्ग में। वो छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार रहीं। उन्हें सन 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1995 में दिया गया। 2003 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

0: ये प्रस्तुति उन्होंने दी थी भोपाल में आयोजित लोक रंग में सन 2023 में।
1: आज आए हुए माता बहन भाई, बड़े बुजुर्ग, बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों के आशीर्वाद। बहुत दिनों के बाद में फिर भोपाल आने के लिए मौका मिला। कह गया कि सारी जिंदगी नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े, अरे बुढ़ापा आए तो कम से कम छोड़ दिया जाए, पर भी नहीं, चलिए क्या करूं, काम कर सकूं कि ना कर सकूं, चल सकूं, पर आप लोगों के प्यार पाकर थोड़ा थोड़ा चलने के लिए तैयारी करी। और धन्य है मेरे भाग के जिस एज में मुझे काम करने के लिए मौका मिला। तो हम सब मिलजुल के चले कुरुक्षेत्र मैदान के ओर, जहां कौरव और पांडवों की लड़ाई तैयारी थी। अब भाई भाई में कितनी परेशानियां हैं, यदि वही मिलजुल के रहते हैं तो महाभारत काल नहीं होता। तो चले हम कुरुक्षेत्र की तरफ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।

जाके और कौरव बल्ले मारत रहे। कौरव चिल्ला पड़ेगा, बचाओ, कोई है।

0: भाई।
1: और दूसरा साल ले मारे के प्रयास करत रहे भीम से, और भीम के लाके बोले दूसरा साल आज सातवां दिन के लड़ाई पहला मेल मुलाकात की है।
0: हाँ भाई
1: दादा।

0: में बैठ के भुजा दोनों हाथ में भुजा पकड़े रहे सुशासन चिल्लाने
1: का
0: बचाओ। अरे कोई है बचाओ, पर वहां कोई बचाने

कैसे बोकर बोकर देखा था सियार भाई, नकुल का है भैया, माई का है।

सभापति का बता।

बोलना नकुल चुप खड़े रहे। द्रौपदी के गुस्सा के मारे नकुल के बोलती बंद। द्रौपदी पूछा जाते तोला भूख लगे रही से।

0: करते करते तुम लोगों को भूख लगती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो पहले से बता दिया होता,
1: मोबाइल कर दिया
0: मैं रोटी के गट्ठा लेके। नकुल कहे मैं रोटी खाने नहीं आया हूँ,
1: तो?
0: मैं अपने मन से भी नहीं आया हूँ। हाँ, गदाधारी भीमसेन।
1: हाँ,
0: गदाधारी भीमसेन। बोले हाँ, गदाधारी भीम भैया मुझे भेजे हैं। द्रौपदी बोले किस लिए?
1: क्यों
2: भाई
0: द्रौपदी?
1: हाँ,
0: चुपचाप सुनेगी तो बता सकता हूँ, और ऐसे जोर लगा के चिल्लाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
1: बताइए।
0: तो बोलिए बोलिए, बात क्या?
1: हाँ होगा।
0: गदाधारी भीमसेन इसलिए मुझे भेजे गए हैं,
1: क्यों?
0: कि भैया दुशासन ले पछाड़ के भुजा उखाड़े पर तैयारी।
1: हाँ,
0: तोला द्रौपदी

0: के भुजा वो खाने पर तैयारी है।
1: होगा
0: बलाय के बात सुने द्रौपदी अपन एक के

0: हमारी भीम, तो भीम के ताकत के डबल।
1: वाह भैया,

0: जब पकड़ के केस घसीटते हुए मुझे दरबार में लाया गया।
1: ओ भाई,
0: यही तेरा खुजान का दूसरा सन, चारों तरफ सन्नाहट छाए रहे, एक शब्द कोई ना बोले है। किसी के पास ताकत नहीं ताकि द्रौपदी के सामना कर सके। काली के समान द्रौपदी रूप धारण करने वाली श्री कृष्ण देख के बाप रे बाप, द्रौपदी मान गई तो मान गई और किसी के बात में कोई ध्यान नहीं देगी। हाथ में खड़ंग और खप्पर लेके कौरव पांडव कूद गई तो सोच लो मुनि के तरह सेना ने काट काट के खप्पर में भरा दे। श्री कृष्ण चारों तरफ देख के कहे,
1: हाँ
0: द्रौपदी,
1: हाँ हाँ भाई
0: द्रौपदी,
1: हाँ
0: अब ये द्रौपदी सुन हो गए,
1: हाँ होगा,
0: दुशासन के शकल देखते देखते होश हवास खो गए,
1: हाँ
0: एक शब्द किसी के बात में ध्यान नहीं देते रहे।
1: हाँ
0: भगवान जोर से चिल्लावे, अब ये द्रौपदी आपका दायित्व, द्रौपदी क्यों से गई, द्रौपदी मेरी बात में ध्यान देगी, थोड़ा सुन लीजिए द्रौपदी, तू जो करने जा रही है ना ये तो बड़ा खतरा है।
1: हाँ भाई,
0: तो भगवान कृष्ण जी द्रौपदी नहीं माने, दोनों हाथ ले जोड़ के कहे,
1: हाँ
0: जय जय।

आपके सामने जो मेरी दुर्गति हो रही थी, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हमारा ही परिवार हमारा ही बीच में जो मेरे हालत खराब कर रहे थे, कोई कहने वाला नहीं। हे गिरधारी, आप तो मुझे मना रहे हो, पर एक एक बाल यही कह रही है कि रक्त में स्नान करने के बाद भी मैं कमी है। हे कन्हैया, हे गिरधारी, अपनी छोटी बहन समझकर मुझे क्षमा कर देना, गुस्सा करना ठीक नहीं। भगवान कृष्ण ने कहकर कहे है, गदाधारी भीम, यदि आप नहीं रहते तो मेरे मनोकाम पूरा नहीं हो पाती। धन्य है मेरे भाग, आप जैसे मुझे पति मिला, ताकि आत्मा मोर तड़फत रही से वो आत्मा ला शांति दिलाए के खाती। आपने जो ये काम किया, ये काम सबसे बड़ के काम है। ये कहकर द्रौपदी भगवान कृष्ण ने कहे, महाराज तोर

0: कथा यहीं तक समाप्त। कभी भी याद करोगे तो आप लोगों के पास हम दौड़े चले आएंगे। हाँ, हम यही क्षमा चाहते हैं कि पहले के समय जो हम काम करते थे वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। जो आवाज है वही आप लोगों को दे रही हूँ। सभी जन से मैं क्षमा चाहती हूँ, प्रणाम करती हूँ।
1: ये था आज का विशेष कार्यक्रम जो केंद्रित था विश्वविख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई पर। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप? दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
2: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट, पहले आराम से बैठ जाओ।
1: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि ये संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
2: हाँ हाँ जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
1: ओके दादाजी।
2: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: अच्छा दादाजी, यानी आज की कहानी वैज्ञानिकों, मिसाइलों और देशभक्ति की होगी?
2: हाँ बेटा, और साथ ही ये कहानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सपनों और भविष्य से भी जुड़ी हुई है।
1: तो फिर दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
2: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को की गई थी। उस समय भारत ये समझ चुका था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
1: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना? तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
2: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
1: वो तो है दादाजी।
2: वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पिडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
1: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
2: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
1: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
2: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
1: लेकिन दादाजी, एक बात अभी भी मेरे मन में।
2: पूछो।
1: जब मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से खरीदे जा सकते थे, तब भारत को अपनी अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी परीक्षा कल है, तुम्हें पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो तुम जब चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें हर बार किसी दूसरे से किताब मांगनी पड़े तो क्या होगा?
1: तो ये हो सकता है कि समय पर किताब ही ना मिले।
2: बिल्कुल, ऐसे ही अगर परीक्षा के ठीक पहले कोई दोस्त किताब देने से मना कर दे, तब
1: तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
2: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
1: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
2: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
1: कैसा सपना दादाजी?
2: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
1: तो दादाजी, BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
1: दादाजी, क्या सन 70 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
2: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
1: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
1: दादाजी, अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू, अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
2: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
1: हाँ दादू।
2: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है। ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
1: दादू दादू दादू, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
2: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
1: ओ, अब समझे। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
2: सबसे पहले सुनो बेटा आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
1: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
2: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है। ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
1: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
2: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
1: वो तो है।
2: हाँ बेटा, देखो आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: दादू, मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
2: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऐसे लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइल उसे खोजती कैसे होगी?
2: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
1: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
2: बिल्कुल वैसा ही।
1: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
2: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
1: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
2: हाँ हाँ,
1: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
2: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तर बंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
1: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
2: हाँ
1: दादू, ये किस तरह की तकनीक?

0: दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलिना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
1: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है और हेलिना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू समुद्र में क्या होता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
1: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
0: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
1: दादू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
0: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
1: अच्छा?
0: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही हैं बेटा।
1: तो दादाजी, क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
1: दादू, ये तो कमाल है भाई। मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
0: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
1: दादू, क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
0: नहीं नहीं बेटा, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
1: अच्छा?
0: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
1: दादू, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
0: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
1: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
0: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
1: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
1: रोबोट? सचमुच?
0: हाँ हाँ, आज बीडीएल अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
1: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था। क्या इसका भी बीडीएल से कोई संबंध है?
0: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक बुद्धिमान बनाना। और इसमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, स्मार्ट मशीनें, स्वचालित उत्पादन। बीडीएल भी इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन को और अधिक उन्नत बनाता जा

0: रहा है बेटा।
1: दादू आजकल AI की भी तो बहुत चर्चा होती है ना, क्या रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है?
0: हाँ बेटा, दुनिया के अनेक देश अब AI आधारित रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। AI की सहायता से लक्ष्य पहचानना आसान होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
0: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
1: दादू, आपने पहले IDEX का नाम लिया था?
0: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
1: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना लेना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
0: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने, कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
1: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
0: लाभ ही लाभ है बेटा, विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
1: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
0: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
1: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
0: अच्छा,
1: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जिज्ञासा, अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और असफलताओं से कभी ना घबराना, समझी?
1: समझ गई। अच्छा ये बताइए,
0: हाँ,
1: कि आने वाले भविष्य की मिसाइलें कैसी होंगी?
0: बहुत रोचक सवाल है। भविष्य में हम देख सकते हैं अधिक बुद्धिमान प्रणालियां, AI आधारित निर्णय क्षमता, अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, मानव रहित युद्ध प्रणालियां, उन्नत सेंसर तकनीक।
1: और संभव है कि इसमें भी कुछ तकनीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में आज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
0: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया, याद रखो हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
1: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
0: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
1: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
0: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
1: ओ दादू, आपका बस चले ना तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
0: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
1: दादाजी थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
0: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो, जल्दी से घर चलो बेटा।
1: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
0: हाँ बेटा।
2: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
3: और दीपक नेमा
2: को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका इतिहास फिर से आपके साथ, आपके पास। अरे, मगर आज हमारी तारीख कहीं दिखाई नहीं दे रही।
1: नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं आपकी तारीख रोज की तरह सही वक्त पर फिर आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ।
0: सही वक्त पर?
1: जी हाँ इतिहास जी, बिल्कुल सही वक्त पर। अरे भाई, आप मुझे नहीं देख पाए, लेकिन मैं यहाँ आपकी नजरों से ओझल होकर छुप कर बैठी हुई थी।
0: अच्छा, तो आज किसी आजादी के मतवाले की कहानी सुनाने की बजाय कहीं आपका इरादा छुपा छुपी का खेल खेलने का तो नहीं है?
1: अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, आप ही ने तो कहा था ना कि आज आप एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिनका नाम इतिहास के साथ साथ ब्रिटिश मुकदमों में भी बराबर में दर्ज है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें और अपने श्रोता साथियों को उन्हीं बंगाल के क्रांतिकारी आशित भट्टाचार्य के बारे में बताने वाला हूँ, यही मेरा इरादा है।
1: इसीलिए मैं छुपके देख रही थी कि गुप्त रहकर भी कैसे काम किया जा सकता है या अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारी और भारत माँ के सपूत किया करते थे।
0: अरे, वो इस तरह की लुका छिपी का खेल नहीं होता था भाई। देखो मैं बताता हूँ, तारीख ये सशस्त्र क्रांतिकारियों की अलग धारा का इतिहास है, जिसमें पंजाब और बंगाल की एक अलग ही भूमिका है, अलग नेतृत्व है, जिन्हें भारत को आजादी दिलाने का एक अलग ही जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था।
1: वाह, जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था, और इतिहास इसी जुनून, दीवानगी और पागलपन ने हमारी आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना? और यही जुनून और पागलपन आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर क्रांतिकारियों में भी भरा हुआ था।
0: बिल्कुल सही, आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर तब सामने आए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हजारों हजार छात्र जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का त्याग कर चुके थे, गांधी जी के अहिंसक आंदोलन को असफल मान बैठे थे, लेकिन उनके सामने अभी भी क्रांतिकारी संगठन और गुप्त समाज के अपने कार्यभारों की रूपरेखा पर्चों और कलकत्ता के ही एक अखबार युगांतर के माध्यम से प्रस्तुत हो रही थी, और किशोरों और नवयुवकों को भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।

0: आशित भट्टाचार्य महज 17-18 बरस की उम्र में ही हथियारों से लैस था।
1: सिर्फ शस्त्रों से ही नहीं तारी, बल्कि उनके दल पर एक और अहम जिम्मेदारी थी, संगठन के लिए कोष जमा करना। और चूंकि सशस्त्र क्रांतिकारी अपना परिचय गुप्त रखते थे, इसलिए वे आम जन या धनिकों के पास जाकर चंदा उगाही भी नहीं कर सकते थे और न ही किसी को लूट कर या ठग कर ही पैसा हासिल कर सकते थे। तो उनके सामने ले देकर एक ही रास्ता बचता था और वो था ब्रिटिश संस्थाओं की लूट। यही एक रास्ता था रकम उगाही का।
0: इसी कारण से आशित भट्टाचार्य और उनके दल ने बंगाल के गांव इटाखोला डाकखाने से निकलने वाले डाक थैलों को लूटने की योजना बनाई।
1: बिल्कुल, हम इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आशित भट्टाचार्य ने ये योजना ब्रिटिश सरकार पर हमले के लिए ही बनाई होगी। आम लुटेरा तो किसी को भी लूट सकता है, पर ये दल तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा से ओतप्रोत था। और आशित भट्टाचार्य और उसके साथी सशस्त्र क्रांति के ही एक अंग थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के जोश से भरा एक समूह थे। लेकिन एक बात है तारीख, ऐसे क्रांतिकारियों और देशमाता के सपूतों की कुछ असफलताओं का कारण यह भी था कि उनकी आम जनता के बीच कोई पहचान नहीं थी। अर्थात आम लोग ये नहीं पहचान पाते थे कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है वो हमारी आजादी के लिए लड़ रहा है। गोपनीयता ने उन्हें आम जन से काट के रख दिया था। और दूसरी बात ये कि आक्रमण के अलावा उनके पास अन्य कोई आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं थे जिनसे आम जनता के हित जुड़े हों और जिससे वे सशस्त्र क्रांति को गलियों और चौराहों पर ला सकें।
0: पर्याप्त भौतिक साधनों से हीन पुलिस के निर्मम दमन के शिकार ये छुटपुट और अल्पसंख्यक भूमिगत गुप्त संगठन अपनी गतिविधियों में मुख्य रूप से छात्रों, गरीब शहरियों और बुद्धिजीवियों को लेने की ही कोशिश किया करते थे। आशित भट्टाचार्य खुद भी सिलहट गाँव से पढ़ने आया था और एक गरीब शहरी छात्र था, और तो और उसके तीन और साथी भी टिपरा गाँव के ही थे।

0: पहले तो आशित और उसके साथी प्रतिदिन निरीक्षण करते रहे और पता लगाते रहे। तब उन्हें पता लगा कि डाक के थैलों में बीमा किए हुए लिफाफे भी ले जाए जाते हैं जो पैसों से भरे होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक निहत्ता चपरासी ही अकेला इन्हें स्टेशन तक ले जाया करता है और इटाखोला से रेलवे स्टेशन के बीच एक जंगल भी पड़ता है। बस फिर क्या था, वही हमले की योजना बनाई गई।
1: और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इटाखोला डाकखाने को लूटने की योजना बनाई।
0: बिल्कुल, ये दिन दहाड़े होने वाली लूट ही थी जिसका खामियाजा इस दल को आगे भुगतना भी पड़ा। वो सभी पकड़े भी गए और पहचान भी लिए गए। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये थी कि आम जनता ने भी उनकी राष्ट्रीय भावना को नहीं पहचाना और उन्हें आम लुटेरे समझ के पकड़वाने में मदद भी की।
1: मदद ही नहीं बल्कि खुद ही जाकर पुलिस को सौंप भी आए।
0: इस तरह की घटनाओं को देखकर ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सशस्त्र क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण उनकी गोपनीयता भी थी, जिसके चलते जनता क्रांतिकारियों और लुटेरों में फर्क नहीं कर पाती थी। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी थी।
1: लेकिन सोचो कितने महान थे वो सशस्त्र क्रांतिकारी जो अपनी पहचान छुपाकर बिना किसी यश के सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लड़ते थे।

0: हाँ, तो चारों ने योजना बनाई और शस्त्रों से लैस होकर ईटाखोला डाकखाने के चपरासी का इंतजार करने लगे। और दूसरी तरफ से चपरासी भी निकल चुका था। डाकखाने के चपरासी का बयान था कि जब वो थैला लेकर डाकखाने से निकला तो सामने से एक युवक बोतल लेकर आता दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक और नौजवान पीछे से आया और चपरासी को धक्का देकर गिरा दिया। जब वो खड़ा होने को हुआ तब पीछे से उसके सर पर वार किया गया। वो फिर गिरा और तब एक झाड़ी के पीछे से चार नौजवान और निकले और डाक थैला लेकर भाग निकले। तब तक चपरासी बेहोश हो चुका था।
1: हाँ, और इस बयान से ये पता चलता है कि वो कुल मिलाकर 6 नौजवान थे, यानी कि दल 6 लोगों का था।
0: हाँ, आशित भट्टाचार्य और उसके 5 और साथी। कुछ और गांव वालों का बयान था कि चपरासी को मारकर थैला छीनकर भागते हुए इन लोगों को पास के खेत में काम कर रहे किसानों ने भी देखा। वो किसान आशित और उनके साथियों को पकड़ने के लिए शोर मचाते हुए भागे, जिसके कारण कुछ और गांव वाले भी आशित और साथियों के पीछे भागे। सारे लोग आशित और उसके साथियों के पीछे थे और बस यही वो पल था जब आशित ने पकड़े जाने के डर से कट्टा निकालकर गोली चला दी।
1: इसमें एक गांव वाला मारा गया जो कि एक सरकारी कर्मचारी था। आखिरकार गांव वालों ने इन युवकों को पकड़ ही लिया और बिना कुछ समझे बूझे पुलिस के हवाले कर दिया
0: और आशित और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। आशित के 3 साथियों को उम्र कैद, 2 साथियों को कुछ समय का कारावास और आशित भट्टाचार्य पर जान लेने का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी की सजा सुनाई गई।

और इस तरह एक और आजादी का परवाना 2 जुलाई 1934 को फांसी पर लटकाया गया। उस समय इस योद्धा की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। इस छोटे बालक ने इतनी कम उम्र में ही अपनी भारत माँ के लिए कुर्बानी देकर कई नवयुवकों के लिए मिसाल कायम कर दी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी। दिन के ठीक 11 बजे हैं। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं और ये समय है कार्यक्रम परिक्रमा का। कार्यक्रम परिक्रमा, जिसमें आप सुनते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आपके अपने रेडियो आजाद हिंद से। तो आइए आपको सबसे पहले हम लिए चलते हैं रविंद्र भवन में, जहां हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को कार्यक्रम होगा। विश्व रंग फाउंडेशन के जरिए आज शाम 7 बजे होने वाले आयोजन में प्रस्तुतियां होंगी। ये शब्द, स्वर और दृश्य में जीवंत होता देश राग की थीम पर आधारित है। इस प्रस्तुति में कथक नृत्य अकादमी भोपाल के कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में विनय उपाध्याय के वाचक स्वर और संतोष कौशिक और उमेश तरकसवार का संगीत मुख्य आकर्षण होंगे। यहाँ देश प्रेम और पत्रकारिता के इतिहास को समेटे हुए कार्यक्रम होगा, जिसमें कला और साहित्य जगत से जुड़े प्रेमी शामिल होंगे।

दूसरी ओर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाट्य शास्त्र अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र भोपाल परिसर में 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आदावर वल्लभ तिवारी ने संस्कृत नाटक समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने कहा, संकटों के निवारण के लिए रंगमंच एक बड़ा उपक्रम बन सकता है। प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने भरत मुनि की नाट्य परंपरा को वैश्विक मार्गदर्शक बताया। परिसर निदेशक प्रोफेसर हंसधर झा ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि इस माध्यम से विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय रंगकर्मी तैयार करेगा। प्रोफेसर सनंदन कुमार त्रिपाठी और डॉक्टर संगीता गोंदेचा ने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे।

आधुनिकता और डिजिटल स्क्रीन की चकाचौंध के बीच आज की पीढ़ी को अपनी जड़ों और प्राचीन मूल्यों से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कला के जरिए आसान बनाया है आकर्षण जन कल्याण समिति ने। समिति ने भारत की प्राचीन गुरु शिष्य प्रशिक्षण परंपरा को आज के दौर के रंग में ढालकर एक अनूठी नाट्य प्रस्तुति कहानियों का गुच्छा तैयार किया है, जिसने बच्चों में एक नई सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम किया है। निजी स्कूल में इस नाटक का मंचन किया गया। स्कूल के बच्चों ने पूरे उत्साह और कौतूहल के साथ इन कहानियों को देखा और समझा। ये नाट्य प्रस्तुति महज मनोरंजन नहीं बल्कि एक जीवंत पाठशाला साबित हुई है। स्क्रीन से बाहर निकलने का ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मिट्टर मार्केट स्थित दशहरा मैदान में शादी ब्याह और विंटर सीजन की विशेष खरीदारी के लिए उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री कृष्णा गौर ने मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 8 जुलाई से शुरू हुई यह एक्सपो शहरवासियों के लिए 20 जुलाई तक खुली रहेगी। इस बार एक्सपो में पारंपरिक बुनावट के साथ मॉनसून के अनुकूल नए फैशन ट्रेंड्स का बेहतरीन फ्यूजन देखने को मिल रहा है। कर्नाटक से आए बुनकरों ने पारंपरिक पैठनी और मैसूर सिल्क साड़ियों पर राजस्थानी शैली का लहरिया और पिछवई आकृतियों को संजोया है, जिनकी कीमत 15,000 रुपये तक है। राजधानी में सुरू की एक बेहद खास महफिल सजने जा रही है। पार्श्व गायक मुकेश के 103वें जन्मदिन के मौके पर 26 जुलाई को रिमझिम गिरे सावन 2.0 का आयोजन किया जाएगा। कायस्थम संस्था द्वारा आयोजित यह संगीत कार्यक्रम नेहरू नगर स्थित मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सभागार में दोपहर 3:30 से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में मंच पर कायस्थ समाज के 30 चुनिंदा गायक मुकेश के गाए लोकप्रिय फिल्मी गीतों से समा बांधेंगे। पिछले साल 17 अगस्त को मुकेश की 50वीं पुण्यतिथि पर इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें उनकी मौसी मीनाक्षी माथुर और उनके पति मुकेश प्रसाद माथुर शामिल हुए थे। इसमें शहर के कलाकार भी शामिल होंगे।

आइए अब आपको ले चलते हैं एनआईडी में, जहां डिजाइनिंग केवल फैशन तक सीमित नहीं। जी हाँ, ये समाज की समस्याओं को उठाने का जरिया भी है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 3 दिवसीय डिजाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम का पहले दिन ये बात रखी विद्यार्थियों की वैचारिक जिज्ञासा और संवादात्मक सत्र में। फाउंडेशन स्टडीज बैच 2030 के नए छात्रों ने न केवल संस्थान की शैक्षणिक संस्कृति को समझा, बल्कि डिजाइन के भविष्य और इसकी सामाजिक उपयोगिता को लेकर विशेषज्ञों के सामने अपने सवाल भी रखे। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉ. विद्या राकेश और रजिस्ट्रार कृष्ण विरहमान ने किया। यहाँ इस वर्ष महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे विभिन्न राज्यों से आए कुल 83 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने संस्थान में प्रवेश लिया, जिसमें NRI छात्र भी शामिल हैं। वे यहाँ पर फैशन भी सीख लेंगे। इसके लिए आगामी 2 दिनों तक कैंपस परिचय सत्र आयोजित किए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान छात्रों को इसी तरह की जिम्मेदार डिजाइन शिक्षा देने के लिए तैयार कर रहा है। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें आप सुन रहे थे भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक दिग्गज थे। उनकी बौद्धिक प्रतिभा भी किसी भांति कम न थी। मनुष्यों और अन्य बातों का वे सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते थे। नव भारत के जन्म तथा विकास में उनके विचारों का सर्वाधिक योग रहा है। भारत के कोटि कोटि संघर्षरत मानवों के प्रति उनका प्रेम और सहानुभूति केवल गहरी ही नहीं, अपूर्व भी थी।
1: एक और आध्यात्मिक जगत में उनकी पहुंच तथा उपलब्धियां इतनी महान थीं, तो दूसरी ओर निर्धनों तथा असहायों के लिए उनका हृदय रोता था। दीन दुखियों के प्रति इसी करुणा ने स्वामी जी को आर्थिक प्रश्नों तथा समस्याओं पर सतत चिंतन करने को बाध्य कर दिया था। इसीलिए जो लोग स्वामी जी की विचार सारिणी का सुव्यवस्थित अध्ययन करना चाहते थे, उन्हें इस महान हिंदू संत के अर्थनीतिक विचारों से भी परिचित होना पड़ेगा।
0: आधुनिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग आदि के विकास ने आधुनिक अर्थशास्त्र और अधुनातन धार्मिक जीवन को जन्म दिया है। अतः आज के अर्थशास्त्र के प्रति इन महान सन्यासी के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें पहले आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के प्रति उनके दृष्टिकोण को देखना होगा। ये उद्धरण इस दृष्टिकोण के अध्ययन में सहायक होंगे।
2: आज हमारे राष्ट्र को जरूरत है कार्य में क्षिप्रता की, ऐसी प्रतिभा की जो वैज्ञानिक आविष्कार कर सके। इसलिए मेरी इच्छा है कि हमारे युवा इलेक्ट्रीशियन बने, भले ही वो उसमें सफल ना हो सके, पर मुझे इसी बात पर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने बड़ा बनने का और अपने देश के लिए उपयोगी सिद्ध होने का प्रयत्न किया। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आधुनिक विज्ञान से अपरिचित एक नीम हकीम के हाथों चंगा होने की आशा रखने के बदले किसी वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक के हाथों मर जाना अधिक अच्छा है।
1: सर जगदीश चंद्र बसु के प्रति स्वामी जी के मुख निर्गत उद्गार भी यहाँ उल्लेखनीय है। सन 1900 ईस्वी में पेरिस प्रदर्शनी के दौरान हुए वैज्ञानिकों के सम्मेलन में आमंत्रित होकर गए बसु महाशय को देखकर स्वामी जी ने लिखा था,
2: और मेरी जन्मभूमि इस जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इटली आदि बुद्ध मंडली मंडित महाराजधानी में तुम कहां हो बंग भूमि? कौन तुम्हारा नाम लेता है? कौन तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करता है? उन अनेक गौरांग प्रतिभा मंडली के भीतर से बंगभूमि, हमारी मातृभूमि के यशस्वी वीर युवा ने अपने नाम की घोषणा की। वो वीर संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हैं। अकेले इस बंगाली युवा वैज्ञानिक ने आज विद्युत वेग से पाश्चात्य मंडली को अपनी प्रतिभा से मुग्ध कर दिया। वो विद्युत संचार जिससे उन्होंने मातृभूमि के मृत प्रायः शरीर में नवजीवन का तरंग संचार कर दिया, संपूर्ण वैज्ञानिक मंडली के शीर्ष स्थानीय हैं जगदीश चंद्र बसु, भारतवासी, बंगवासी, धन्य है वीर।
0: यूरोप के मार्ग से दूसरी बार अमेरिका जाते समय स्वामी जी ने अपनी यात्रा के रोचक संस्मरणों को परिव्राजक नामक पुस्तक में निबद्ध किया है। इन संस्मरणों में ऐसे प्रसंग हैं जिनसे मशीन, यंत्र आदि के प्रति स्वामी जी के दृष्टिकोण का पता चलता है। इस प्रकार के कुछ विचारों को हम सुनेंगे।
2: जहाज का आविष्कार किसने किया? किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। तात्पर्य यह है कि उन सभी मशीनों की भांति जो मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, जहाज भी सामूहिक श्रम की उपज है। इस सामूहिक श्रम के बिना क्षण भर के लिए भी मनुष्यों का काम नहीं चल सकता, और कारखानों की तरह तरह की मशीनें इसी श्रम के परस्पर योग और अदल बदल से जन्मी है। उदाहरण के लिए चक्कू को लो, कितने अनिवार्य है वे, चरमराती बैलगाड़ी से लेकर जगन्नाथ के रथ तक, करघे से लेकर कारखानों की भीमकाय मशीनों तक, सब जगह चक्के की उपयोगिता है। मशीनों का थोड़ा सा अनुपात अच्छा है, पर उसकी अधिकता मनुष्य की कार्य प्रेरणा को खत्म कर देती है और उसे भी निर्जीव मशीन बना देती है। कारखानों में मनुष्य दिन पर दिन, रात पर रात, वर्ष भर वही एक सा प्राणहीन कार्य किए जा रहे हैं, उनका एक एक दल कार्य के अंश विशेष में जुटा हुआ है, जैसे पिन की घुंडियां बनाना या धागे के दो छोरों को जोड़ना अथवा तागे बाने के साथ आगे पीछे आना जाना, और यह क्रम सारा जीवन चलता रहता है। परिणाम यह होता है कि यदि वो विशेष काम बंद हो जाए तो उन्हें जीविकोपार्जन का दूसरा कोई तरीका नहीं सूझता और वे भूखों मरते हैं। मशीन के समान एक सा कार्य करते रहने से मनुष्य स्वयं निर्जीव मशीन सा हो जाता है।
1: इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्वामी जी मशीनों के अंधभक्त न थे। उन्होंने मशीनों के पक्ष में जो कुछ कहा वो सर्वथा विचारपूर्ण है। स्वामी जी की ये निश्चित धारणा थी कि भारतीयों को पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता को भी अपनाना होगा। स्वामी जी के इसी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में हमें इन उद्धरणों पर विचार करना होगा।
0: आधुनिक जीवन में व्यापार के महत्व के प्रति विवेकानंद पूरी तरह सजग थे। 1895 ईस्वी में न्यूयॉर्क से एक पत्र में लिखते हैं,
2: देव बाबू से कहना कि इंग्लैंड और अमेरिका में मूंग तथा अरहर दाल का अच्छा खासा व्यापार चल सकता है। यदि बनी हुई दाल उनके सामने ठीक ढंग से रखी जाए तो उसका काफी चलन हो जाएगा। यदि दाल के छोटे छोटे पुड़े बना दिए जाएं और उन पुड़ों में दाल बनाने की विधि छाप दी जाए, यदि इन पुड़ों को ग्राहकों के घर पर भेजा जाए और कहीं पर छोटी सी दुकान खोल ली जाए तो अच्छा खासा व्यापार चलाया जा सकता है। यदि कोई एक व्यापारिक संघ बना ले और भारत से इस देश में विक्रयार्थ वस्तुएं ले आए तो उसका व्यापार उत्तम रीति से चल सकता है।
1: शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी के एक शिष्य थे। वे लड़कों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। स्वामी जी ने उन्हें किसी व्यापार में लग जाने को प्रेरित किया था। स्वामी जी ने कहा था,
2: यदि तुम सांसारिक मनुष्य की भांति रहना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो अमेरिका चले जाओ। मैं तुम्हें आवश्यक निर्देश दे दूंगा। तुम देखोगे कि 5 ही साल में तुमने काफी कमा लिया है।
1: इस पर शिष्य ने पूछा था,
3: मैं वहां किस चीज का व्यापार करूंगा? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। पैसा कहां से आएगा?
1: तब स्वामी जी ने उनसे कहा था,
2: क्या मूर्खता की बातें करते हो? तुम में अदम्य शक्ति भरी है। केवल मैं कुछ नहीं हूं करते रहने से तुम सचमुच निर्बल हो गए। तुम्हारी अकेले की ही बात नहीं, सारी हिंदू जाति वैसी हो गई है। एक बार विश्व का भ्रमण करके तो देखो, देखोगे कि दूसरे देशों का जीवन प्रवाह कितनी उद्दामता से बह रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी दो, मुझे नौकरी दो चिल्लाते हुए तुम दूसरों का दरवाजा खटखटाते फिरते हो।
1: उसी दौरान स्वामी जी ने ये भी कहा था,
2: तुम्हारे पास टिकट का पैसा नहीं है तो खलासी का काम करते हुए विदेशों में जाओ। भारत में बने कपड़े, तौलिए, बांस का सामान और अन्य देशी चीजें ले जाओ और यूरोप एवं अमेरिका की सड़कों पर फेरी लगाओ। तुम देखोगे कि आज भी विदेशी बाजारों में भारतीय चीजों की कितनी पूछ है। मुझे अमेरिका में हुगली जिले के कुछ लोग मिले जो इसी प्रकार भारत में बनी चीजों की फेरी लगा लगा कर आज धनी बन गए हैं। तुम में क्या उन लोगों से भी कम बुद्धि है? उदाहरण के लिए सुंदर बनारसी साड़ियों को ले लो। संसार के अन्य किसी भी भाग में उस प्रकार की साड़ी नहीं बनती। अमेरिका में उन साड़ियों को ले जाओ और साड़ियों के वस्त्र के गाउन बना बना कर बेचो, फिर देखना कि तुम कितना कमाते हो।
0: इन उदाहरणों से ये पूर्णतः स्पष्ट है कि यद्यपि स्वामी जी एक सन्यासी थे, आध्यात्मवादी थे और जीवन के कुछ पहलुओं के प्रति यथार्थ अर्थों में रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे, फिर भी विज्ञान, इंजीनियरिंग, मशीन, वाणिज्य आदि के प्रति उनका दृष्टिकोण नितांत आधुनिक था। परिवारजक पुस्तक के इस उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है।
2: प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता को उसके अधुनातन स्वरूप पर ले जाने में जो बातें कारण स्वरूप रही हैं, उनमें भारत के वाणिज्य का स्थान कदाचित सबसे महत्वपूर्ण है। स्मरणातीत काल से भारत उपज और उद्योग वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे आगे रहता आया है। एक ही शताब्दी पूर्व की बात है, सूती वस्त्र, कपास, जूट, नील, लाख, चावल, हीरे, मोती आदि संबंधी विश्व की समूची आवश्यकता एकमात्र भारत ही पूरी करता रहा है। भारत के समान उत्कृष्ट कोटि के रेशमी और किनखाब जैसे ऊनी वस्त्र बनाने वाला देश और कोई नहीं रहा है। यहाँ की लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल और जावित्री आदि प्रसिद्ध रही है। अतः स्वभावतः बहुत पुरातन काल से जो भी देश जिस किसी युग में सभ्यता के आलोक से आलोकित हुआ, तब उसे उन सब सामग्रियों के लिए भारत पर ही निर्भर रहना पड़ा। ऐ भारत के श्रमिक वर्गों, ये तुम्हारे ही निरंतर नीरव श्रम का फल है कि बाबिल, फारस, सिकंदरिया, यूनान, रोम, वेनिस, जुनोवा, बगदाद, समरकंद, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड और इंग्लैंड क्रम से प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचे हैं।
1: भारत के आर्थिक जीवन का जो पहलू स्वामी जी के ध्यान को सबसे अधिक आकर्षित करता है, वो है गरीबों की समस्या। वे कहते हैं, भारत में सारी विपत्तियों की जड़ है यहाँ के जनसाधारण की गरीबी।
2: पूर्व की ज्वलंत आवश्यकता धर्म नहीं है, धर्म उनके पास यथेष्ट है, वो तो रोटी है जिसके लिए भारत के लाखों विपन्न लोग सूखे गले से चिल्ला रहे हैं। वे मांगते हैं रोटी और हम उन्हें देते हैं पत्थर। अनाहार से पीड़ित लोगों के समक्ष धर्म परोसना उनका अपमान करना है। अपने धर्म के क्रिया अनुष्ठानों को फिलहाल ताक पर रख दो और पहले जीवन संग्राम के लिए तैयारी करो। भूखे पेट धर्म की साधना नहीं हो सकती। हम में से जो लोग अभी उच्चतम शक्तियों के लायक नहीं हुए हैं, उनमें से अधिकांश के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक तरह का विष रहित हुआ भौतिकवाद वरदान सिद्ध होगा।
0: स्वामी जी का मत था कि लोगों के लिए केवल साधारण भोजन, वस्त्र और आवास अर्थात अनिवार्य आवश्यकताओं की ही व्यवस्था न हो, अपितु उन्हें सुखोपभोग के अवसर भी प्राप्त होने चाहिए। वे कहते थे कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये वांछनीय है। जो लोग मन से भोगों और सुखों की लालसा करते रहते हैं, उन पर आध्यात्मिक उन्नति थोपी नहीं जा सकती।
2: वस्तुओं की असारता देखकर और अनुभव करके उन्हें त्याग देना होगा, यही आदर्श है। जब ये देख लिया कि भौतिक जगत निसार और खोखला है, केवल राख से भरा है, तब उसका त्याग करके वापस चले जाना चाहिए। मन मानो वृत्ताकार में इंद्रियों की ओर जा रहा है, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। इस मन को पीछे आना चाहिए, वापस आना चाहिए, इसे निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति को बंद होना चाहिए और निवृत्ति को कार्यरत, यही आदर्श है। पर इस आदर्श की अनुभूति जीवन के सुखों का कदाचित अनुभव हो जाने के पश्चात ही हो सकती है।
1: एकदम से संपूर्ण त्याग का जीवन अपनाने का जिनमें सामर्थ्य और साहस नहीं है, उन्हें सांसारिक सुखों के खोखलेपन के अनुभव और अनुभूति के लिए अवसर देना चाहिए।
2: परंतु जीवन के प्रति इस मोह को त्यागना बड़ा कठिन है, बहुत कम लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो उपाय बताए गए हैं, एक है नेति नेति का मार्ग और दूसरा इति का। पहला निषेधात्मक है और दूसरा विधेयात्मक। निषेध अर्थात नेति नेति का रास्ता सबसे कठिन है, वो केवल इन्हें गिने बहुत उदात्त मानस वाले प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही साधता है। अधिकांश लोग तो इति का, संसार में से होकर जाने का ही रास्ता अपनाते हैं। यह वैसे ही है जैसे कांटे से कांटा निकालना, बंधनों की सहायता से स्वयं उन्हीं बंधनों को काट डालना।
0: उन्होंने पूरब और पश्चिम की तुलना करते हुए देशवासियों को फटकारा था।
2: पश्चिम के लोगों में रजोगुण का आधिक्य है और इसलिए आज वे सुखोपभोग की सीमा तक पहुंच गए हैं। क्या तुम समझते हो कि उनके बदले तुम योग में सिद्धि प्राप्त करोगे? तुम जो पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हो।
1: हम कह चुके हैं स्वामी जी महान आध्यात्मिक दिग्गज थे। उनमें ये घोषणा करने का साहस था, अंतर्दृष्टि और गहराई थी कि भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति में कोई मौलिक विरोध नहीं है। वे कहते हैं,
2: जब आत्मा की उन्नत शक्ति जड़ पर अपना कार्य करती है तो उससे भौतिक प्रगति होती है, जब वो विचारों पर कार्य करती है तो उससे बौद्धिक विकास होता है, और जब वो शक्ति स्वयं आत्मा पर ही कार्य करती है तब मनुष्य देवता बन जाता है।
0: ये उक्ति उन महान आत्मा विवेकानंद के सबसे गंभीरता तथा उद्बोधक उद्गारों में से एक है। हमारी महान मातृभूमि की उन्नति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम स्वामी जी के इस महत्वपूर्ण कथन के गूढ़ मर्म को कहां तक समझते और क्रियान्वित करते हैं।
1: जैसा हमने देखा कि स्वामी जी के मतानुसार भौतिकवाद और आध्यात्मवाद में कोई अंदरूनी या मौलिक विरोध नहीं है, उसी प्रकार उनके मत से पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं में भी विरोध नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और भविष्य की आदर्श सभ्यता उन दोनों के मिलन से जन्म लेगी।
2: पश्चिम की वर्तमान सभ्यता दिन पर दिन मनुष्यों की इच्छाओं तथा विपदाओं को बढ़ा रही है। दूसरी ओर भारत की प्राचीन सभ्यता लोगों को आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता बता करके उनकी भौतिक जरूरतों को पूरी तौर से सदा के लिए भले न सही पर बहुत अंश में दूर करने में निसंदिग्ध रूप से सफल हुई है। वर्तमान युग में भगवान श्री राम कृष्ण का आविर्भाव इन दोनों सभ्यताओं को एक में मिला देने के लिए हुआ है। आज के युग में मानव को एक ओर जहां अत्यंत व्यवहारिक बनना है, वहीं दूसरी ओर उसे गूढ़ अध्यात्म विद्या भी प्राप्त करनी है। भारत को यूरोप से बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सीखना है और यूरोप को भारत से आंतर प्रकृति को जीतने की कला सीखनी है। तब न हिंदू रहेंगे न यूरोपियन, तब रहेगी वो आदर्श मानवता जो बाह्य और अंतर दोनों प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर चुकी होगी।
0: हम पुनः गरीबी के प्रश्न पर आते हैं। स्वामी जी ने गरीबी के पाप को दूर करने के लिए कौन से उपाय सुझाए हैं? ये उपाय क्रमबद्ध रूप से विवेचित हुए हैं क्योंकि स्वामी जी ने एक अर्थशास्त्री की भांति उन पर वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने का दावा नहीं किया है। तथापि इस प्रश्न पर उनके दृष्टिकोण को हम उनके भाषणों और लेखों से जान सकते हैं।
1: उनके मतानुसार जो प्रथम दो उपाय हम देखते हैं वे हैं पराविद्या अर्थात आध्यात्म विद्या का प्रसार, जिससे वेदांत को व्यावहारिक धरातल पर लाकर लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में उतारा जा सके, और अपराविद्या का प्रसार। वे कहते हैं,
2: हमने ये अन्नदान बहुत किया, अब हम अन्य दो का दान करें, परा और अपराविद्या का दान। कुछ कैमरे, नक्शे, ग्लोब और कुछ रासायनिक द्रव्य इकट्ठा करो। इसके बाद एक बड़ी झोपड़ी, फिर निर्धन जनता को इकट्ठा करो और उन्हें भूगोल एवं खगोल विद्या आदि संबंधी चित्र दिखाओ तथा रामकृष्ण परमहंस की बातें बताओ। संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या है, इस विषय में उनकी आंखें खोलने का प्रयत्न करो। गरीब अपढ़ लोगों के बीच जाओ, उनके घरों में पहुंचो, दोपहर में जाओ, शाम को जाओ, जब भी वे मिल जाएं उनकी आंखें खोलो। पुस्तकें किसी काम की नहीं, उन्हें मौखिक शिक्षा दो।
0: इसी बात को उन्होंने समझाकर कहा है,
2: अद्वैत का एक दोष रहा है कि अब तक आध्यात्मिक स्तर पर ही उसका कार्य होता रहा है, जीवन के अन्य किसी स्तर का उसने स्पर्श नहीं किया, पर अब उसको व्यावहारिक बनाने का समय आ गया है। अब वो और रहस्य बना हुआ ना रहेगा, अबोर हिमालय की ग्रीक कंदराओं में निभृत वनों में सन्यासियों के साथ ना रहेगा। उसे अब लोगों के प्रतिदिन के जीवन में उतरना होगा। राजा के महल में और तपस्वी की कुटिया में समान रूप से उसका कार्य होगा, गरीब की झोपड़ी में और सड़क के भिखारी में, सर्वत्र सब में अब उसकी क्रिया होगी। अद्वैत को व्यवहार में लाने का समय अब आ गया है। आओ उसे स्वर्ग के सिंहासन के मर्त्य की भूमि पर ले आए। यही इस युग के लिए ईश्वरी योजना है।
0: स्वामी जी की राय में हमारी गरीबी का एक मुख्य कारण है आलस्य। राजसिक प्रवृत्ति का प्रसार ही उसको दूर करने का उपाय है। वे कहते हैं, असल पाप तो ये आलस्य है जो हमारी गरीबी का मुख्य कारण है।
2: किंतु क्या ये सब जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करना, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और यातायात आदि को बढ़ावा देना कभी संभव हो सकता है, यदि मनुष्यों में यथार्थ रजोगुण ना जागे? मैंने सारे भारत का भ्रमण किया, पर मुझे इस राजस की अभिव्यक्ति कहीं भी नहीं मिली। सब ओर मैंने तमस ही तमस देखा। लोग तमोगुण से घिरे पड़े हैं। केवल सन्यासियों में ही मैंने इस रजस और सत्व का प्रकाश देखा है।
1: स्वामी जी देशवासियों को शक्तिशाली देखना चाहते थे। उन्हें जगाने के लिए उन्होंने कहा,
2: हर व्यक्ति को बताओ कि उसमें अनंत शक्ति भरी है, कि वो अक्षय आनंद का भागीदार है। इस प्रकार लोगों में राजसिक भाव जागृत करो, उन्हें जीवन संग्राम के योग्य बनाओ और तत्पश्चात उनसे मुक्ति की बात करो।
0: स्वामी जी के अनुसार गरीबी के उन्मूलन का उपाय है वैज्ञानिक उत्पादन के लिए पाश्चात्य अर्थात आधुनिक तरीकों को अपनाना। हमें पश्चिम से वो सब सीखना चाहिए जो हमें जीवन संग्राम के लिए मजबूत बनाएगा। पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपने को क्षुद्र समझते हुए याचना के स्वर में, मानो उनके उपकारों से दबे हुए से, हम उनसे सब सीखें, क्योंकि हम भी पश्चिम को अध्ययन ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और इस क्षेत्र में उनके गुण बना सकते हैं।
2: तो क्या हमें पश्चिम से कुछ नहीं सीखना है? क्या हम पूर्ण हो चुके हैं? हमें अभी भी कई बातें सीखनी हैं। मरते दम तक हमें नई और उच्चतर बातों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं कट्टर की तीव्रता चाहता हूं और साथ ही भौतिकवादी का विस्तार भी। मैं ऐसे विस्तार चाहता हूं जो समुद्र के समान अथाह हो और अनंत आकाश के समान सीमाहीन। हम विश्व के किसी भी देश की भांति उदार विचार वाले हों, पर साथ ही अपनी परंपराओं के प्रति उतने ही सच्चे संरक्षणशील भी हों जितना केवल एक हिंदू ही रह सकता है। हमें पश्चिम से उसकी कलाओं और भौतिक विज्ञानों की शिक्षा लेनी होगी। पश्चिम के विज्ञान की सहायता से भूमि को खोदो और अनाज उत्पन्न करो, पर दूसरों की दास्ता करते हुए नहीं, बल्कि पाश्चात्य विज्ञान के सहयोग से अपनी भुजाओं के बल पर उत्पादन के नए तरीकों का आविष्कार करके।
1: गरीबी की समस्या हल करने के लिए स्वामी जी ने अगला उपाय बताया, नए व्यवसाय खोलना। वे कहते हैं,
2: हम मूर्खों के समान बाह्य सभ्यता के विरुद्ध आवाजें उठाते हैं, और उठाएं क्यों ना, अंगूर खट्टे जो हैं। बाह्य सभ्यता जरूरी है, यही नहीं ये भी आवश्यक है कि हम जरूरत से अधिक और दूसरी वस्तुओं का भी उपयोग करें जिससे गरीबों के लिए नए व्यवसाय खोल सके। भौतिक सभ्यता ही क्यों, ऐशो आराम भी जरूरी है ताकि गरीबों को काम मिल सके।
0: स्वामी जी ने हमें बताया है कि भारत के आर्थिक जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण यहां असीम आर्थिक प्रगति हो सकती है। जैसे भारत के गरीब दूसरे देशों की तुलना में अच्छे हैं, भारतीय आत्मा की शक्ति में विश्वास करते हैं, जबकि पश्चिम के लोग भुजाओं की शक्ति में। भारत में प्रचुर प्राकृतिक साधन पाए जाते हैं।
2: मैं गरीब हूं, गरीबों से प्यार करता हूं। मैं अमेरिका के गरीब कहलाने वाले लोगों को देख रहा हूं उनकी व्यवस्था मेरे देश के गरीबों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, तो भी उनके लिए अमेरिका के न जाने कितने हृदय रोते हैं, और हमारे देश में वहां के सदा से 20 कोटि स्त्री पुरुषों के लिए भला किसका हृदय रोता है? उनकी मुक्ति का क्या उपाय है? कौन रोता है उनके लिए? वे अंधकार से प्रकाश में नहीं आ पाते, उन्हें शिक्षा नहीं मिल सकती, कौन उन्हें आलोक दिखाएगा?
1: उन्होंने और भी कहा है,
2: जब मैं पश्चिमी देशों में था तो जगन माता से प्रार्थना किया करता था, मां यहां के लोग फूलों की सेज पर सोते हैं, भांति भांति के उत्तमोत्तम भोजन करते हैं, और कोई ऐसा सुख नहीं है जो वे नहीं भोगते, जबकि मेरे देश के लोग भूखों मर रहे हैं। अंबे, क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? पश्चिम में जाकर धर्म का प्रचार करने का एक कारण मेरा यह भी था कि मैं अपने देश भाइयों के पेट भरने का कोई उपाय ढूंढना चाहता था।
1: स्वामी जी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आस्थावान थे। वे कहते थे, भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। वे कहते हैं,
2: कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई है। भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा अनंत गुना महिमान्वित होने वाला है। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है। मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसा वो पहले कभी नहीं था।
1: विवेकानंद के भाषण और लेख उस लक्ष्य की प्राप्ति के अमूल्य सुझावों से भरे पड़े हैं, और यदि हम अपने सपनों में संजोए हुए भविष्य के महान भारत को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने महिमान्वित सत्य के रूप में साकार करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के सुझावों के अनुसार हमें कार्य करने होंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, दिन के 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। आप हमारे कार्यक्रमों को प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और अब हमारी दोपहरकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं लोक गायिका मालिनी अवस्थी की गायी कुछ रचनाएं।
1: आज कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो छटा है दिखा सके, तो कुछ मौसम की चीजें होंगी जो आप सुनना भी चाहते हैं। और कार्यक्रम का प्रारंभ राग मिश्र तिलक कामोद में एक ठुमरी से कर रही हूँ।

उत्तर प्रदेश महोत्सव हम सब मना रहे हैं। सच जानिए मैं बड़े पशुपेश में थी, क्या सुनाऊं, क्योंकि ये लग रहा था क्या छोड़ूं, जो गाती हूँ सारा उत्तर प्रदेश का है और ऐसा ऐसी धरोहर है, ऐसा ऐसा खजाना है। आप लोग सब विद्वान और एक से एक अच्छे लोगों को सुना आपने, इसलिए जहाँ पर जिस मंच पे मेरी गुरु गा चुकी हूँ वहाँ पे ठुमरी और दादरा के बारे में बताने के

लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ये गुइया जो है ये खास उत्तर प्रदेशी है। गुइया यानी सहेली। आपको याद हो हम लोग के बचपन में कहावत भी चलती थी, झगड़ा हो जाए दो सहेलियों में तो कहते थे गुइया खुट्टी। अभी भी कभी कभी उसकी मिसाल दी जाती है कि अच्छा गुइया खुट्टी हो गई क्या। गुइया यानी सहेली, नायिका,

छांव में कौन खड़ा रहता है? कन्हैया कृष्ण खड़े हुए हैं। अब जब खड़े रहे होंगे फिर ऋतुएं भी आई होंगी, मौसम भी

सब जानते हैं कि भाषा का, संस्कृति का, साहित्य का, संगीत का, सबका मूल लोक में है। हमारी दादरा को भी लें तो बंदिशें लोक भाषा में हैं, कभी ब्रज में है, कभी बनारस पूर्वी में है। ऐसे ही आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज सुना रही हूँ, पुरानी बंदिश बनारस के बड़े विद्वान श्रद्धेय रामू जी की बंदिश है और अप्पा जी ने उनसे सुनी, मुझे सिखाई। आप लोगों की नजर कर रही क्योंकि उस बंदिश कैसी है वो आप जब शुरू होगी तो आप समझ जाएंगे।

ये साहित्य रतियों में बिंदिया लगाने मिटाने में कई सावन बरस गए साजना। विरह पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी हकीकत रही जो आज भी सच्चाई है। कमाई के लिए परदेश जाना आज से 500 साल पहले भी सच्चाई थी तो आज भी है, और उस विरह ने ऐसे ऐसे अनमोल साहित्य को जन्म दिया है। एक से एक रचनाएं और लोकगीतों में, दादरा में, ठुमरी में आपको एक कजरी सुना रही हूँ, बनारसी कजरी का उन...

शील संकोच संबंधों में कैसा था, अपने पति के बारे में कैसे अदब से पूछ रही है, कौन रंग ननदी तोर बीरना, बीर यानी भाई।

का कितना सुंदर प्रयोग है। पत्नी है, अब पति पत्नी के संबंध में इशारे में आप देखें उसी रंग की उपमा से कैसी गंभीर बात है।

गया भैया, सारा चला गया। देखिए ये जनता की आवाज होती है, असली आवाज आई, आर्टिफिशियल साउंड गई।

0: देखिए कैसे कैसे हम लोगों के यहाँ पर भाव भीने शिशु के प्रसव में गानों में कैसे कैसे जोड़ा गया रिश्तों को, कैसे कैसे सीखे भी दी बुजुर्गों ने।
1: मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ रही

राजा दशरथ कोई खबर मिली? महल में अंतःपुर में राम का जन्म होने वाला है और तीन तीन रानियां मिलकर के एक दाई को मना नहीं पा रही। ये दाई कैसी दाई, इतनी मंगल बेला में रूठ गई। धीरे धीरे दशरथ समझ जाते हैं बात। दशरथ ये जान जाते हैं, हो ना हो यह दाई धन बल से मानने वाली नहीं, धन की लोभी नहीं। और दशरथ जाते हैं, सोचिए दशरथ जाते हैं अयोध्या नरेश एक साधारण सी दाई के पास जाते हैं और कहते हैं,

सोचिए ये गीत हम लोगों के पूर्वजों ने हमें क्यों सिखाए। जिस जमाने में न लेखनी न वर्तनी न रेडियो न टेप रिकॉर्डर, कुछ ही गाने नई पीढ़ी को क्यों सौंपे? सिखाने के लिए। पुत्र का जन्म हो पुत्री का जन्म हो, उत्सव मनाओ, लेकिन याद रखना कैसे मनाना है। वो राजा थे अपना मान छोड़ के दाई को मनाने आए हैं, क्योंकि आज दाई का दिन है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये है लोकगीतों की परंपरा, समवेशी, सभी का सम्मान। लेकिन लोकगीत वो लोकगीत ही नहीं, एज दे से इन इंग्लिश द किंग कैन नेवर हैव द लास्ट वर्ड। लोकगीतों में प्रजा का अंतिम वाक्य होता है। दाई वो कुछ लेने थोड़ी आई,

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी खून सफेद।

चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी, पशुओं के शरण स्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत की आलाप सुनाई पड़ती, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद तक न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी, किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक बार में ही लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और सूख गए। गोचर भूमि में घास जमी, बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पूजे, बलिदान दिए, पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल ही धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई, और जब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा, तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे, जहां जिसको सुभीता हुआ वो उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। ये कहते कहते वो आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी। आज दो दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी यानी बीज बैल आदि के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण उसी का सहारा था। उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वो भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलावे। लज्जा के मारे वो हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वो उसकी ओर देखेगा तो उसे वो क्या खाने को देगी। उसने आज कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वो शुधा तुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है, घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वो अपना कर्तव्य समझती है, और चाहिए उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वो पुरुषों को नहीं हो सकती। अचानक उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वो बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाइयों में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया, उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा, गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन ये परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुषों के चित्त से अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाय पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। मान और अभिमान, ग्लानी और लज्जा, ये सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। वे दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वो गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती थी, जादू राय चुप था। गांव के 2-4 आदमियों से रास्ते में भेंट भी हुई, किंतु किसी ने इतना भी न पूछा कि कहां जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सर पर था। देखा तो मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे।
वैसाख की जलती हुई धूप थी, आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी तरह का कोई कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे थे। मानो वो मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्रें खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर अपने काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूख उसके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था और न हेतु। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वो स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर ये ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा कभी गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे, संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे क्रश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वो स्वाधीन कृषक नहीं रहे, समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है, कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंखें खोल दी, बुखार उतर गया था। वो बोला, क्या हम घर आ गए मां? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा गई। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तब घर चलेंगे। देखो, उठकर देखो, कितना अच्छा बाग है। साधु मां के हाथों के सहारे उठा और बोला, मां मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज रखकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां अब भी बनाए देती हूं। साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और बोला, मां मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख तो ना होता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। ये विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं, उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम वहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देव की रोटियां सेक रही थी। साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया, प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी ना देखा था। बुखार की बेचैन कर देने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी इस भोलेपन पर मुस्कुराकर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा, मां के पास ऐसी अच्छी चीजें कहां, वो तो मुझे चने की रोटियां खिलाती है। देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने मां के पास आकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं, वो बहुत अच्छे साहब हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा, साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ रहा करूंगा। मां ने समझा लड़का हंसी कर रहा है, उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। साधु बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वो फिर से खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी, उसका बुखार भी जाता रहा। वे भोले भाले किसान ये देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का भला चंगा हो गया और आराम से हो गया। साहब को परमात्मा सुखी रखे।
उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का वहां पता न था। उसने समझा कहीं टपके आम ढूंढने गया होगा, लेकिन थोड़ी देर देखकर उसने जादू राय से कहा कि लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा कि शायद कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं उसे ले आता हूं। जादू राय ने आसपास के सब बागों को छान लिया और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला, ये देखकर देवी दाढ़े मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापों के निशान देखते हुए चले जाते थे, यहां तक कि वे एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ियों के बहुत सारे निशान थे, उस विशेष लीक की पहचान नहीं हो सकती थी। घोड़े के टाप भी झाड़ी के एक तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने समझाना शुरू किया। अब जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो फिर से दोनों आगे चले, लेकिन अब आशा की जगह निराशा थी। घोड़े की टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से दिखाई पड़ते थे। ये दोनों दुखिया हिम्मत हार कर पेड़ के नीचे टिके रहे। उसी वृक्ष पर मैना का एक जोड़ा बसेरा लिए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे और इस समय वो भी निराश होकर बैठे थे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई नहीं देती थी, इसलिए वो बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा और भय की लहरें उठने लगती, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिया जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता ना दिखाई और ना जमीन नहीं। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भर चली। उजड़े हुए गांव फिर बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट बना रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा

की सारे गांव में धाक बंधी थी। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वो इतनी उदासीन नहीं थी। उसके जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं था। उनकी दो संतानें थीं। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता था और लड़की का नाम शिवगौरी था। वो भी माँ को चक्की पीसने में सहायता करती और खूब गाती थी। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में वो निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते, हाँ इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता था। खोए हुए साधु की याद अब तक बाकी थी। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती। सांझ हो गई। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन थे, रोज पूजा होती थी। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौनते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि अकस्मात एक नव युवक दिखाई पड़ा जो भौंकते हुए कुत्तों को दुत्कारता हुआ बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई, साधो से देखते ही उसके पैरों पर गिर गया। देवकी लड़के को छाती से लगाकर रोने लगी। गांव में मर्द औरतें और बच्चे सब के सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा कि मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी में खुद बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब तुम हमें छोड़कर भागे थे तो हम लोग 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठे रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया होगा जब तुम्हारी सुध न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया और अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम भागे कैसे और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया कि माता जी, अब अपना हाल क्या कहूं। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछता हुआ दोपहर को उनके पास पहुंच गया। साहब ने पहले मुझे समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे। वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती तो मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों में हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ और अपना पराया समझने लगा हूं, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूं। रात दिन आप लोगों की रट लगी थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन कटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वो अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे? उन्होंने तुमको भी पादरी बना दिया होगा? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, ये तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, ये बहुत कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बताएगी मैं करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में कभी ऐसा हुआ है? यूं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख ले, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुने। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मार डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आंखों में आंसू भरे हुए कहता है कि पिताजी अपनी गोद में ले लो, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूं, शोक। इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या ना करूं?
लेकिन मां की ममता उमड़ आई। देवकी से रहा न गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने लाल को अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी ही छूट क्यों ना जाए। देवकी ने भी गरम होकर जवाब दिया, हां चाहे बिरादरी ही छूट जाए। लड़के बच्चों के लिए ही तो आदमी आड़ पकड़ता है, और जब लड़का ही न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठाकुराइन बिरादरी की तो तुम खूब मर्यादा करती हो, लेकिन लड़का चाहे किस रास्ते पर जाए और बिरादरी चूं तक न करे। अरे ऐसी बिरादरी कहीं और होगी, हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी अरे बिरादरी थोड़ी कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर रहे, पर जरा खाने पीने और छुआ छूत का बचाव रखना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो। जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देख कर बोला, बेटा जहां तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कही और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लो, यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए। ना ये मेरे किए न होगा, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वो चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए, फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी होगी। साधु इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। वो बोला, मैं आपका लड़का हूं, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है, मैं अपने घर में रहने आया हूं, और अगर ये मेरा घर नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं और मुस्कुराकर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर बोला, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या, मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो ना हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह कितना अपनापन था। बोला, मां आया तो इसी इरादे से था कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाति च्युत कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा, मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा, इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिलेगा तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह संभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं, इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर से पानी लाई। साधु हाथ मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। माधु ने आदर पूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी मां को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। मां खड़ी ये दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और मां बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहां से तंग होकर आया था उसी क्षेत्र में जहां कोई अपना न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हृदय में एक ऐठन से अनुभव करते हुए सोच रहे थे कि हाय हाय मेरे लाल, तुम उससे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और ये केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है।

0: सुनो कहानी के इस अंक में आपने मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी सुनी। अपने अगले अंक में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: मैंने भी सुना है उनके बारे में।
4: अच्छा?
2: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी। ऐसी मान्यता लोगों में आदिकाल से चली आ रही।
2: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
4: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
2: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है। परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
4: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
2: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
4: बिल्कुल,
2: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
4: कौन से श्लोक?
2: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियाँ बृहदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
4: अच्छा।
2: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
4: क्या?
2: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
4: भाई वाह, क्या बात है।
2: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
4: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
2: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
4: बिल्कुल।
2: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
4: हाँ, गौतम बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था, जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है, जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
2: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
4: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
2: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थ यात्रियों का मेला लगा रहता है।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
2: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
4: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
2: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
4: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
2: उस क्षेत्र के वरवधू शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
4: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
2: कौन सा?
4: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
2: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
2: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
4: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
2: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
4: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
2: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
4: हाँ,
2: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
4: बिल्कुल,
2: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
4: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
2: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
4: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
2: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
4: कौन सी?
2: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक हो जागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
4: बिल्कुल।
2: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
4: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
4: अच्छा?
2: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शामे अवध सुबह काशी। यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है, भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
2: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
4: वाह वाह, क्या कल्पना करिए तुमने, दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
2: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
4: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
2: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
4: बिल्कुल,
2: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
4: कौन से श्लोक?
2: अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियाँ वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
4: अच्छा।
2: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
4: क्या?
2: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
4: भाई वाह, क्या बात है।
2: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
4: श्रोता, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
2: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2500 साल पहले का है।
4: बिल्कुल।
2: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
4: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगाड़दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
2: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
4: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
2: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थ यात्रियों का मेला लगा रहता है।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
2: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
4: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है,

0: दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मरणिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधू शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका, कुछ और नहीं बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ,
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
1: बिल्कुल।
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा

0: नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा, सड़क पर जाम लगा है कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं।
0: हाँ।
1: श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
1: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
1: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
1: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
1: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
0: इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थीं, वे केवल एफिलिएटेड थीं।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा के गाए कुछ भजन।

कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई, आ जाते हैं राम कोई बुला के।

ईश्वर तक जो पहुंचने का मार्ग है वो कितना सहज, कितना सरल और किन किन चीजों की आवश्यकता है इस भजन के माध्यम से।

जाना था गंगा पार प्रभु, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े जाना था गंगा पार प्रभु।

केवट ने भगवान राम को उस पार उतार दिया, तो भगवान राम ने केवट को कुछ देना चाहा, तो केवट को उसे लेने से मना कर दिया। भगवान राम ने केवट से कहा, केवट ले लो, ये तो तुम्हारी मजदूरी है और मजदूरी लेने में कोई शर्म नहीं की जाती। तो केवट ने कहा, प्रभु ये शर्म की नहीं है, तो नियम की बात है।

को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने केवट से पूछा कि मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे? केवट ने कहा प्रभु है, और बोला

भगवान राम ने कहा ये तो नाई और धोबी का मामला है, मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला

जिसने ना तो रामायण पढ़ी हो ना सुनी हो ना देखी हो, लेकिन आज मैं आपको जो रामायण सुनाऊंगा वो आपने ना तो कहीं पढ़ी होगी ना सुनी।

शास्त्रों और पुराणों में यह कहा गया कि भजन सुनना जितना पुण्य का काम है उससे कहीं ज्यादा भजन गाना है। कितने देर से ये गाने वाला पुण्य अकेले मैं कमा रहा हूं, इतने थोड़े से पुण्य के लिए आप लोग क्यों वंचित रह जाए। और वैसे भी आपको ये भजन अच्छा लगा, एक पंक्ति मैं गाऊंगा उसे आप लोग दोहराएंगे तो गाने वाला पुण्य आप लोगों को मिलेगा और सुनने वाला हम लोगों को।

0: क्या बात, आप लोग इतना अच्छा गा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाएं अच्छा गा रही है पुरुष। तभी फैसला कर लेते हैं, पहले मैं गाऊंगा फिर महिलाएं। तैयार हो जाए महिलाएं।
1: दुनिया चले न श्रीराम के बिना,
0: थोड़ा जोर से।
1: दुनिया चले न श्रीराम के बिना,
0: ये बात।
1: राम जी चले ना हनुमान के बिना,
0: क्या बात। कुछ महिलाएं तो गा रही हैं, कुछ अपने पड़ोसी को देख रही हैं कि वो गा रही है। अब पुरुषों की बारी है।

तुम मीरा बनो तो। ये भजन अभी तक आप लोगों ने कुछ इस तरीके से सुना होगा।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा के गाए कुछ भजन सुने। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 MHz पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, Amazon पॉडकास्ट और साथ ही YouTube पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप मंडल 1 के 164 के भाग 4 का वाचन सुनेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम पेश किया जाएगा 5:10 पर। 6 बजे का समय है कार्यक्रम वतन की राग का, सुतांशु दत्त राय पर आधारित है आज का कार्यक्रम। बाल सभा प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर, नशे का साथ जिंदगी का नाश। 7 बजे का समय है हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम का, कारगिल युद्ध भाग 2 पर भाग 33 का प्रसारण होगा। श्रद्धांजलि तीजनबाई पर आधारित है विशेष कार्यक्रम की, 7:30 पर जरूर सुनिए। 8 बजे पेश किया जाएगा कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आप सुनेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के बारे में। 8:30 पर आजाद हिंद का प्रसारण किया जाएगा, असित भट्टाचार्य पर केंद्रित है। 9:30 पर सुनिए युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर। वेद, पुराण, आख्यान ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर है, और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: अवह परेण पितरम यो अस्यानुवेद पर एनावरेण कवीयमानः क इह प्र वोच देवं मनः कुतो अधिप्रजातम्। जो द्युलोक से नीचे इस पृथ्वी के पिता सूर्यदेव तथा पृथ्वी के ऊपर स्थित अग्निदेव को जानते हैं, उपासना करते हैं, वे निश्चित ही विद्वान हैं। यह दिव्यता से युक्त आचरण वाला मन कहाँ से उत्पन्न हुआ? इस रहस्य की जानकारी देने वाला ज्ञानी कौन है? यह हमें यहाँ आकर बताएं। ये अर्वांचस्ताम उपराच आहुर्ये परांचस्ताम उ अर्वाच आहुः इंद्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति। इस गतिशील विश्व में जो पास आते हुए को दूर जाता हुआ भी कहा जाता है, अनुभव किया जाता है, और दूर जाते को पास आता हुआ भी कहा जाता है। हे सोमदेव, आपने और इंद्रदेव ने जो चक्र चला रखा है वह धुरे से जुड़ा रहकर लोगों को वहन करता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्य नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। साथ रहने वाले मित्रों की तरह दो पक्षी गतिशील जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष प्रकृति अथवा शरीर पर स्थित हैं। उनमें से एक जीवात्मा स्वादिष्ट पीपल अर्थात माया के फल खा रहा है, दूसरा परमात्मा उन्हें न खाता हुआ केवल देखता दृष्टा रूप में रहता है। यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषम् विदथा भिस्वरन्ति इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश। इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठी हुई संसार में लिप्त मरण धर्मा जीवात्माएं सुख दुख रूपी फलों को भोगती हुई अपने शब्दों में परमात्मा की स्तुति करती हैं। तब इन लोकों के स्वामी और संरक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त मुझ जीवात्मा में भी विद्यमान है। यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधिविश्वे तस्ये दाहुः पिप्पलम् स्वादग्रे तन्नो नषद्यः पितरं न वेद। इस संसार रूपी वृक्ष पर प्राण रस का पान करने वाली जीवात्माएं रहती हैं जो प्रजा वृद्धि में समर्थ हैं। वृक्ष के ऊपर मधुर फल भी लगे हुए हैं। जो पिता परमात्मा को नहीं जानते वे इन मधुर सत्कर्म रूपी फलों के आनंद से वंचित रहते हैं। यद गायत्रे अधि गायत्र माहितम त्रैष्टुभाद्वा त्रैष्टुभम निरतक्षत यद्वा जगज्जगत्याहितम पदम य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः। पृथ्वी पर गायत्री छंद को, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद को तथा आकाश में जगती छंद को स्थापित करने वाले को जान लेता है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत। एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

दूसरों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

0: हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया।

शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह की अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए तेरे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी, और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूँ जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों, जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बनके आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है, और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं, लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है, और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते मैम।
2: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
4: मैम मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
2: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है, तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
4: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
2: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
4: जी,
2: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
4: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं ये क्या चीज़ करते हैं। जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
2: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
4: जी।
2: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं?
4: जी।
2: है ना, तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया?
4: जी।
2: ठीक है, पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
4: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं दादी जी,
2: जी,
4: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जभी से हुई।
2: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
4: जी,
2: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
4: जी,
2: यही कहा था आपसे,
4: जी,
2: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं। नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
4: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
2: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
4: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
2: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर, कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
4: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
2: क्या हुआ फिर?
4: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
2: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
4: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
2: जी।
4: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर 2-4 दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि 2-4 दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
2: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं, तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
4: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
2: जी।
4: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
2: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
5: नमस्ते,
2: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम प्रीति है।
2: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
5: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीजें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चे के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पे काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पे पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
6: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से, अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
5: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए, तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
6: जी।
5: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते कि हमारे साथ के कुछ बच्चे नशे की चीजें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
6: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से, इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है।
2: यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना? क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना? एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
4: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आईं और पुलिस वाली मैम आईं और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
2: में तब्दील हो गई,
4: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपये का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं ये मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
6: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
4: जी,
6: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
4: जी,
6: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेल्यूसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है, है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
4: जी,
6: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
4: जी, बिल्कुल
6: किसी नहीं। अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
4: जी,
6: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो रही होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटे तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
5: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई बहुत, समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक
6: जाके बैठ जाते हो,
5: फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
6: कोई तो सुने, पहली बात
5: कोई तो सुने, बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम्हें पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत, जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं अब इसका असर उन पर
6: दिख ना जाए।
5: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पे जाना शुरू हो गया, जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
6: मेरा पैसा मैं
5: मेरा,
6: कुछ भी करूं।
5: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th थी। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
6: हद में रहो
5: हद में रहो अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस होगी, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
6: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदी हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बालसभा मुझे लगता है कि सिर्फ बालसभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी एक अंधेरा रास्ता कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो। है ना एलेक्स?
4: जी बिल्कुल।
6: आ सकता है?
4: जी जी।
6: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। भारतीय सेना की आन बान और शान पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत है हमारी सेना हमारा गर्व।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
7: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। हमारा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं हमारी भारतीय सेना से जुड़े हर उस पहलू को जिसे हम आम नागरिकों को जानना बेहद जरूरी है, आवश्यक है, ताकि गर्व कर सकें हम अपनी भारतीय सेना पर, जिसके कारण आज हमारा राष्ट्र चारों दिशाओं से सुरक्षित है, महफूज है। श्रोताओं, राष्ट्र की संप्रभुता, सम्मान और सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सेना के वीर सेनानियों के बलिदान और पराक्रम की गाथाओं से देश का इतिहास लिखा गया है, और वर्तमान में भी, यानी आज जब हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये हम कभी ना भूलें कि सरहद पर 24 घंटे हमारी इन सांसों की निरंतरता के लिए कोई सैनिक चौकन्ना है, तैनात है। भारतीय सेना के इन्हीं वीर चौकन्ने और मुस्तैद सिपाहियों की एक गौरव गाथा, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं या जिसे कारगिल युद्ध के रूप में पहचानते हैं, इसकी चर्चा कार्यक्रम में हम इन दिनों कर रहे हैं। श्रोताओं, कारगिल की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। ऊंचाई पर दुश्मन का बैठा होना, हमारी हर गतिविधि पर उसकी नजर होना, दुश्मन की संख्या क्या है, उनके पास हथियार किस तरह के हैं और कितने हैं, इसका सही अनुमान न लगा पाना, माइनस से भी कई डिग्री नीचे का तापमान, ऑक्सीजन की कमी और तीखी चढ़ाई पर बिना आड़ के दुश्मन की नजरों से बचते हुए रातों में इंच दर इंच आगे बढ़ना, ये सारी परिस्थितियां बेहद ही चुनौतीपूर्ण थी। फिर भी हमारे जाबाज सेना के वीरों ने बड़ी ही शौर्य और पराक्रम से कारगिल की उन चोटियों को वापस लिया और उन पर अपना तिरंगा फहराया। तोलोलिंग की लड़ाई, जिसका कि जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, उस पर फतेह बेहद ही दुष्कर थी, लेकिन तोलोलिंग को वापस पाने के बाद इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट आया। आइए एक बार हम रुक करते हैं फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की ओर, जो स्टूडियो में एक बार फिर हमारे बीच हाजिर हैं कारगिल की गौरव गाथा को हमारे साथ साझा करने के लिए। सर, एक बार फिर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: नमस्कार पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं।
7: जय हिंद सर।
8: पूर्वा जी
7: जी,
8: आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में
7: जी
8: जिस तरह से आपने वो बताया है
7: जी,
8: बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी
7: जी जी जी,
8: टेम्परेचर माइनस में, बिल्कुल सीधी चोटियां जो है, डोमिनेटिंग हाइट्स पे दुश्मन का होना
7: जी,
8: और उनका जो हमारी मूवमेंट में लगातार इंटरफेरेंस करना, एक तरह से मतलब बहुत ही दुष्कर ऑपरेशन था ये, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसमें जो सफलता मिली है वो सच में हमारे जांबाज बहादुर सिपाहियों का जोश था
7: जी, बिल्कुल सर।
8: और उनके अंदर एक जो अपने देश के लिए प्रेम था, देश प्रेम था
7: जी,
8: मैं कहूँ तो एक तरह से देखा जाए तो वो सर पे कफन बांध के निकले थे
7: जी, बिल्कुल सर।
8: जिस तरह से उन्होंने ये किया है
7: जी जी,
8: हमने जैसे पिछली बार जिक्र किया था तोलोलिंग का
7: जी,
8: निसंदेह तोलोलिंग को कैप्चर करना बहुत बड़ी जीत थी
7: जी, बिल्कुल सर।
8: अभी जो है बहुत कुछ बाकी था,
7: मेरी जानकारी है सर, ये तो पहला स्टेप था।
8: एग्जैक्टली ये तो पहली हाइट थी जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हाइट थी, हमने जो है कैप्चर करी
7: जी।
8: टू राजीव जैसे हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था
7: जी।
8: अब आगे जो है और भी जो लोकेशन थी जिसमें कि एनिमी बैठे हुए थे
7: जी,
8: पाकिस्तानी बैठे हुए थे और इंटरफेयर कर रहे थे, हमारे ऑपरेशंस में भी इंटरफेयर कर रहे थे
7: जी।
8: तो जैसे तोलोलिंग के ठीक पीछे एक हाइट थी जो नॉर्थ में
7: जी,
8: उसको हम 0.5140 बोलते हैं।
7: आपने जो नंबर बोला तो ये नंबर जो है उस चोटी की ऊंचाई को बताता है।
8: एग्जैक्टली ये उस चोटी की ऊंचाई को बताता है, उसके हिसाब से उसको हम नाम देते
7: जी,
8: हैं।
7: उसी नाम से पुकारने
8: जी, उसी नाम से पुकारते हैं
7: जी।
8: तो ये जो हाइट थी मतलब तोलोलिंग से भी ऊपर
7: ऊपर है
8: एंड अगेन ये भी काफी बड़ा फीचर था, दुश्मन ने जो है इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां से अगेन वो डोमिनेटिंग हाइट पे था। तो तोलोलिंग को अगर हमको बरकरार रखना है तो इसको कैप्चर करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और आप ये समझ सकते हैं कि इतना मैसिव फीचर था कि उसके लिए एक बटालियन नहीं तीन बटालियन है, पूरी ब्रिगेड का लेवल का एक अटैक किया गया
7: जी, जी।
8: उस फीचर पे जो है तीनों तरफ से तीन दिशाओं से जो एक साथ अटैक किया और उस अटैक में मतलब जो है पूरा जो डिवीजन था उसकी जितनी आर्टिलरी होती है मतलब और मोर्टर फायर होता है उसके सपोर्ट था। इंडियन एयरफोर्स ने जो है उससे पहले जो है टारगेट्स के ऊपर जो है बम्बार्डिंग करी थी और पूरा जो है फोर्स लगा था
7: जी।
8: और उसका कारण ये है कि ये इतने मैसिव फीचर्स होते हैं और उसमें आपको स्टीप क्लाइम करके ऊपर जाना है तो ये जरूरी है कि उससे पहले हमें ये फायर सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये जो मैसिव फीचर था इसके लिए बहुत बहादुरी से हमारे सिपाही लड़े, इंच इंच करके आगे बढ़े, तीनों तरफ से जो है डायरेक्शन से अटैक आया। और इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे जो 13 जैकरिफ बटालियन थी
7: जी,
8: उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे
7: जी,
8: ये नाम आप बहुत अच्छे से जानती
7: हैं, बेहद मशहूर
8: है जी। ही वाज एक्सेप्शनली ब्रेव ऑफिसर जो फ्रंट से लीड करके इनिशिएटिव लेके हमेशा आगे जाते थे। तो ही एक्चुअली शोड एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन दिस अटैक बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उन्होंने जो है जो उनको ऑब्जेक्टिव दिया गया था उस पे कैप्चर करते समय दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे एंड जितने वहां सोल्जर्स थे उन्होंने काफी डेयर डेविल अटैक में काफी सोल्जर्स को हैंड टू हैंड फाइट में मतलब जो है खत्म किया था और उस पोजीशन को कैप्चर किया था। तो कहते हैं कि कैप्चरिंग के बाद जब अपने उसी हिसाब से वो बात कर रहे थे तो बड़ा
7: मशहूर जुमला है सर वो, दिल मांगे
8: बिल्कुल सही बोला आपने। आप सोचिए एक यंग कैप्टन उसका कितना जोश था
7: सर, वो तो शेरशाह कहलाते थे।
8: वो शेरशाह कहलाते थे, सच में वो शेरशाह थे
7: जी।
8: और इस जुमले ने और उसके बाद जब इंटरव्यू में भी उन्होंने यही एक्सप्रेस किया था कि मैं जब तक इनको निकाल नहीं दूंगा मतलब जो है मुझे मेरा दिल तो हमेशा मांगता रहेगा कि हर मेरे को ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्टिव लेना है। ये बिकेम ए हाउसहोल्ड नेम अक्रॉस द कंट्री,
7: बच्चा बच्चा जानता है सर
8: जी। उसके बाद ये और जितने और सोल्जर्स थे बटालियंस थी उन सब ने मिलके जो है फाइनली ये जो 0.5140 पे आखिरकार 20 जून को कैप्चर किया, कब्जा किया जो है। ये जब कब्जा होता है उसमें क्या होता है आप ये देखिए कि जो मैसिव फीचर होते हैं जैसे वो एक चोटी के ऊपर ही दुश्मन नहीं होता है, वो उसके आसपास छोटे छोटे
7: बिखरे
8: पोस्ट बनाई हुई होती है। तो एक एक करके जो है इनको कैप्चर करा जाता है, कैप्चर करके आगे बढ़ा जाता है और हर स्टेप के ऊपर आपको एक नई लड़ाई लड़नी होती है। हर स्टेप के ऊपर नया चैलेंज होता है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से फिर फायर आ रहा है, उस बीच में रसद भी आ रही है, एमिनेशन भी आ रहा है पीछे से, आपके साथियों कैजुअल्टी हो रहे हैं ठीक है, उनको आप इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल होता है जब आपके साथ जो लड़ रहा होता है सडनली यू फाइंड कि ही इज डेड। इट इज अ वेरी मतलब मेजर इंपैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी एंड यू हैव टू रियली कंट्रोल योरसेल्फ एट दैट टाइम कि अभी 2 मिनट पहले था और अभी नहीं रहा और उससे भी ज्यादा दुख होता है जबकि उसको गोली लगी हुई है और आपको उसको इवैक्यूएट भी करना है और सामने दुश्मन से भी लड़ना है। और ये इस युद्ध में सबसे ज्यादा था उसका कारण, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दुश्मन को हम दिख रहे थे
7: जी,
8: वो हमसे ऊपर बैठा,
7: हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे,
8: हम उन्हें इतना क्लियरली नहीं देख पा रहे थे जितना कि वो हमको देख रहा
7: था।
8: एंड उसको हाइट, डोमिनेटिंग हाइट पे होने का एडवांटेज था। दैट्स व्हाई ये जो ऑपरेशंस हैं
7: जी,
8: ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं। एंड हम उन हर सोल्जर की कुर्बानी के लिए उसके सामने नतमस्तक होते हैं।
7: बिल्कुल सर, नमन है हम सभी
8: जी, नमन है जिन्होंने सर में सच में कफन बांध के जो है लड़ाई लड़ी
7: जी, बिल्कुल।
8: और उनके दिल में क्या होता होगा, दिल में कितना देश प्रेम था उन्होंने कि हमारे यहाँ पे आपने घुसपैठ किया है, हम आपको नहीं रहने देंगे और उसको निकाला।
7: बिल्कुल सर,
8: तो मैं तो एक एक सोल्जर जो है जो भी रहे
7: जी,
8: उनको सबको जो है सैल्यूट है हमारी तरफ से। इसी तरह से अभी हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अदर फीचर जो बहुत फेमस हुआ था आपको याद होगा, टाइगर हिल
7: जी।
8: अब टाइगर हिल जो है इट्स अ मैसिव फीचर
7: जी,
8: जो कि उसके आसपास की जितनी पहाड़ियां अगर आप फोटो देखेंगे आपको दिखेगा बिल्कुल अलग से नजर आता है, बिल्कुल
7: सबसे ऊंची चोटी
8: बिल्कुल अलग से दिखती है और बहुत बड़ी है, मतलब 2.2 किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर फैली हुई ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ टू साउथ में। और ये जो है मतलब NH1 alpha जो हमारा जाता है तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर दूर जो है नॉर्थ में थी, और वो मतलब जो चोटी है वो पूरा का पूरा NH1 alpha उस समय जो इसको डोमिनेट करती, जो श्रीनगर लिए रोड है उसको डोमिनेट कर रही थी
7: जी। और सर मैंने सुना कि दुश्मन के पास ऐसे हथियार थे जो 7-8 किलोमीटर दूर हमारे नेशनल हाईवे पर वो बम्बार्डिंग कर सकते थे
8: जी। उसमें क्या होता है, यहाँ पे आर्टिलरी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन से जो है पीछे अपनी जो आर्टी गन्स होती है उसका फायर लेकर आते हैं
7: जी।
8: तो ऑब्जर्वेशन क्योंकि इनको क्लियर था तो इस कारण से आर्टी फायर लाने में उनको बहुत मदद मिल रही थी, जो कि हमारी पूरी व्हीकल मूवमेंट थी उसमें इंटरफेरेंस होता था क्योंकि लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही होती थी तो मूवमेंट नहीं हो पाता था। और इस फीचर पे जो है कहते हैं पाकिस्तान आर्मी की नदन लाइट इन्फेंट्री

0: करने के बाद उसको फुटहोल्ड बना के दूसरी पोस्ट आगे बढ़ के कैप्चर करते हैं। तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे ऑपरेशन होते हैं, माउंटेन्स पे समय बहुत लगता है। ये जो है अगेन इट वॉज अ मैसिव फीचर, और तब तक जो है टीवी ने भी इसमें मतलब न्यूज टीवी में मतलब तकरीबन सब लोगों ने देखा था। हाँ, तो एक बड़ा डिस्कशन था कि इसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, क्या ये कैप्चर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एक ये भी था कि ये तो भाई इतना मतलब मैसिव फीचर है कि इस पे बहुत मुश्किल है, असंभव सा काम है कि इसको जो है आप मतलब कैसे कर पाएंगे। बट फाइनली तो हमने कैप्चर किया, और इसके लिए जो बटालियन थी 18 ग्रेनेडियर और 86 जो थी उनके साथ आर्टिलरी थी, इंजीनियर्स थे, एक हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में, तो वहां से जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं वो लोग माउंटेन्स में
1: पहाड़ों पर
0: लड़ाई करने के लिए, तो उसके भी जो है स्पेशल टीम्स आई हुई थी इसके लिए। जब अटैक हमने 3 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर से शुरू किया था, उससे पहले जो है मैसिव आर्टिलरी बम्बार्डमेंट किया उसके ऊपर, IAF जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने स्ट्राइक्स करी थी, मिसाइल अटैक्स हुए थे, क्योंकि नहीं तो आप उस ऑब्जेक्टिव तक तो पहुंचना
1: है के लिए तो बहुत ध्यान भटकाने के लिए भी बहुत जरूरी था
0: जी, उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है ना, उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है। एक तो वो हमारे इलाके में घुसा हुआ है, मतलब हर तरह से हमारा हक है कि हम अपना इलाका हमारे घर में घुसा है तो हम उनको निकालने के लिए कुछ भी कर सकते,
1: किसी भी कीमत पर जा सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें भी अगेन जो है मल्टी डायरेक्शनल अटैक लॉन्च करें जो है, और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया वही सेम मतलब जो है स्टीप क्लाइम्स हैं, बहुत रगेड टेरेन है, इंटेंस फायर आ रहा है दुश्मन का डोमिनेटिंग पोजीशन से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक एक एक एक पोस्ट को क्लियर करते हुए जा रहे थे। एंड अगेन देखिए आप, इट इज नॉट कि ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लड़ाई है, घंटों लग जाते थे, मतलब रात से दिन हो जाता था, दिन होते थे तो मतलब जो है आप एक्सपोज होते थे, दुश्मन आपको देख रहा होता था। जो हमारे जवान हैं उनका मोटिवेशन देखिए कि वो भूखे प्यासे होते थे, ठंड में पड़े होते थे, उसके बावजूद जो है ना तो कभी उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, जहां तक वो आगे बढ़ गए वो फिर पीछे नहीं आए, कहीं पे भी वो पीछे नहीं आए।
1: सर मुझे तो ये सुनने में आया है कि वो अपने साथ अपना राशन ले जाने के बजाय गोलियां ले जाना ज्यादा प्रेफर करते थे, ताकि क्योंकि ऊपर चढ़ाई बहुत मुश्किल है।
0: बिल्कुल, खाना खाने का तो पता नहीं लेकिन गोली होना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर लड़ना है तो गोलियां जरूरी है, और वही उस समय हमको बचा सकती है जो है। तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो फाइनली जो है 18 ग्रेनेडियर्स दे रियली डिड अ वंडरफुल जॉब, एंड 4 जुलाई को दे अचीव्ड अ मेजर सक्सेस होल्डिंग दिस, ठीक है, ओके ग्राउंड उन्होंने जो है इसको कैप्चर किया
1: जी।
0: अब ये था कि इसको कैप्चर करने के बाद जो दुश्मन था उन्होंने लगातार काउंटर अटैक किए
1: जी वापस पाने के लिए,
0: तो इसमें भी जो है मतलब ये बैटालियन जो है अपने इनके जो जवान है
1: जी
0: लड़ते रहे, कंटिन्यूअसली लड़ते रहे, उस जगह को
1: छोड़ा नहीं
0: जी। एक बार आया तो नहीं छोड़ा। यहाँ पे अपन जिक्र करते हैं, मतलब ये जो अटैक हुआ था
1: जी जी,
0: इसमें अगर आपको याद होगा उस समय जो ग्रेनेडियर्स थे योगेंद्र सिंह यादव
1: जी सर,
0: है ना
1: जी, नाउ इज ऑनरेरी
0: जी ऑनरेरी कैप्टन, जिन्होंने की बहुत ही एक्सेप्शनल बहादुरी दिखाई
1: जी,
0: दिखाया इस अटैक में, उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा
1: जी, बिल्कुल सर बिल्कुल।
0: वो क्या था कि जब ये अटैक हो रहा था तो हमारी घातक प्लाटून होती है, घातक प्लाटून मतलब इट्स लाइक ए कमांडो प्लाटून जो बटालियन में होती है, छोटी सी होती है, जिसके की लोग बहुत ही फिजिकली फिट होते हैं, ट्रेंड होते हैं। वो जनरली क्या करते हैं कि ये ऐसे दुर्गम इलाकों में उनको डिप्लॉय किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। तो जो योगेंद्र सिंह जी थे वो इस घातक प्लाटून के मेंबर थे, वो इसका हिस्सा थे, तो जिसका काम दिया गया था कि टाइगर हिल टॉप पे आपको जाके कैप्चर करना है, क्योंकि स्टीप क्लाइम था, तो इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा सबसे आगे और जो है रस्सी ले जाके उसको फिक्स भी करूंगा। तो इन्होंने जो है वॉलंटियर करके आगे बढ़े और फिक्स करते हुए रोप फिक्स करते रहे, क्योंकि बहुत स्टीप था, जिसकी मदद से जो बाकी टीम भी ऊपर चढ़ती गई। तो जैसे ही टॉप पे पहुंचे हैं दुश्मन को भनक लग गई कि तो उन्होंने देखा तो उनको दिखा और उन्होंने बहुत जो है हैवी इंटेंस फायरिंग इनके ऊपर शुरू करी। वो इतनी इंटेंस थी कि जो टीम लीडर थे और साथ में जो 2 सोल्जर और थे घाटक लोगों के वो वहीं शहीद हो गए। इतना फायर आ रहा था तो उसके कारण जो है मूवमेंट स्टॉल हो गया एक तरह से
1: जी।
0: तो फिर से जो है योगेंद्र सिंह ने मतलब ही टुक द इनिशिएटिव, धीरे धीरे क्राउल करते हुए आगे गए और जो दुश्मन का जो संगर था उस पर उन्होंने अटैक किया और वहां पे जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स थे तो उन्होंने लगातार उनको फायरिंग करके एंड उनके साथ लड़ते हुए ऑलमोस्ट ही किल्ड एवरी वन ऑफ देम, चार पांच जो थे
1: जी।
0: अब इनके जो एक्शन से क्या हुआ कि वो जो मशीन गन फायर हो रही थी वो शांत
1: वो बंद हो गई
0: तो जब वो बंद हुई तो बाकी जो टीम थी उनको मौका मिला तो उन्होंने भी आगे बढ़ के एंड बाकी जो बंकर्स संघर्ष जो थे उसके ऊपर जो है उन्होंने अटैक करा अटैक किया एंड फाइनली द टीम सक्सीडेड, प्लेटून सक्सीडेड और जो है इन्होंने टाइगर टॉप पे कब्जा किया था
1: जी।
0: अब इसमें जो है योगेंद्र सिंह जी को काफी खुद को भी बुलेट इंजरीज हुई थी,
1: मैंने सुना सब 15 बुलेट्स थी
0: जी उनको, काफी मतलब जो है दानाद में गोलियां लगी थी। लेकिन देखिए फिर भी उनका आप हौसला देखिए
1: जी जी,
0: इतनी बुलेट लगी है ना तो वो पीछे हटे ना उन्होंने इवैक्यूएशन होने का वो किया कुछ भी किया, लेकिन वो लड़ते रहे वहां पे जो है
1: जी।
0: एंड राइटफुली फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी इनिशिएटिव एंड करेज, ठीक है, ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द कंट्री, परमवीर चक्र उनको मिला
1: जी।
0: और ये आप अगर देखें कि हर एक जो सोल्जर था जो गया है 18 ग्रेनेडियर्स के, हर सोल्जर्स ने अपने जो है पूरी बहादुरी और जांबाजी से अपना कार्य किया था। हाँ ये जरूर है कि उसमें कुछ जो हटके इन्होंने किया वो बहुत ही ज्यादा था
1: जी, ये तो बिल्कुल असाधारण काम,
0: असाधारण काम,
1: ये हम सोच ही नहीं सकते ना कि एक मनुष्य होकर इतना जज्बा रख लेना 15 गोलियां खाने के बाद भी
0: जी
1: अपनी बहादुरी पूरी की तरह से देश प्रेम के लिए बिल्कुल उड़ेल के रख देना सर।
0: और इनिशिएटिव देखिए आप कि मैं आगे जाऊंगा,
1: हाँ जी
0: मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के बाद जो है मैं ये कार्य करूंगा
1: जी,
0: तो राइटफुली मतलब एंड ही इज ऑनरेडी कैप्टन जो है और ही डिजर्व्स अ रियल सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस,
1: असली कारगिल हीरो हैं सर
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर हिल तो इन्होंने लिया जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि उसके आसपास भी जो पोस्ट थी अब वो उनसे इंटरफेरेंस हो रहा था, तो वहां से भी फायरिंग कर रहा था
1: जी।
0: तो उनकी जो बाकी पोस्ट थी जहां से कि उनकी रसद भी सप्लाई हो रही थी और जहां से उनका रीइंफोर्समेंट भी आ रहा था
1: जी,
0: उसको रोकना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए जो 86 बटालियन थी साथ में उनको टास्क दिया गया। अब अगेन वहां से उन्होंने जो है अटैक करके जो बाकी जो पोस्ट थी उनको कैप्चर किया। अगेन मैंने तो एक लाइन में बोल दिया है लेकिन सच में यकीन मानिए एक लाइन का एक सेकंड का काम नहीं था,
1: बहुत दुष्कर है,
0: बहुत ही दुष्कर थे जो है इस पे चढ़ना। अगेन मतलब जो है इट्स एक्चुअली नीड्स लॉट ऑफ करेज एंड डिटरमिनेशन, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन होते हैं वो जो है वहां पे उसी को समझ में आता है एंड उनको काफी कैजुअलिटीज भी हुई इनकी जो है, बट अगेन दे वर एबल टू कैप्चर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू देम। उसके बाद दुश्मन ने काफी मेजर काउंटर अटैक्स भी किए रिगेन करने के लिए, लेकिन ये जो सिख रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे सिख के वो अपनी पोस्ट पे डटे रहे एंड उन्होंने तो एक इंच भी जमीन वापस नहीं करी, जो ले लिया वो तो फिर हमारा है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी, है ना। तो ये जो मैसिव फीचर था इसको जो हमने कैप्चर किया था
1: जी,
0: तो इट वाज एक्चुअली सच ए बिग सक्सेस फॉर द आर्म फोर्सेस कि इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन।
1: जी बिल्कुल सर,
0: इनफैक्ट एवरीबडी सेलिब्रेटेड इट, ठीक है, एंड इट वाज ए मेजर लॉस टू पाकिस्तान, ठीक है, इट वाज ए मेजर ब्लो टू देम, ठीक है, ओके। अच्छा पाकिस्तान का तो ये हाल था कि वो ये मानने से भी इनकार कर रहा था कि कोई टाइगर हिल नाम की फीचर है या उनकी आर्मी वहां पे है
1: मौजूद है,
0: जो है तो 8 जुलाई को हमारा तिरंगा 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पे लहराया एंड वाज अगेन ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। एंड ये जो विक्ट्री थी इससे काफी कुछ जो है हमें सक्सेस मिली और ड्रास सेक्टर में जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया। वो जो मेजर पोर्शन था तोलोलिंग टाइगर हिल और उसके बाद ये जो
1: जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे खतरे में था,
0: काफी बड़ा हिस्सा जो है हमने चेक किया।
1: सर यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो द्रास क्षेत्र है उसके अलावा भी कोई ऐसी जगह थी जहाँ से दुश्मन हमारे यहाँ घुस आए थे और वहाँ भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी?
0: जी हाँ बिल्कुल, द्रास तो एक सेक्टर था बीच में
1: जी,
0: अगर आप देखें तो उसके वेस्ट में, यानी कि द्रास और जोजीला के पास है, के बीच में मशको वैली आती है, वहां पे भी इन्होंने जो है पाकिस्तानियों ने घुसपैठ करी थी।
1: अच्छा।
0: और ये तकरीबन NH1 अल्फा जो रोड है उसका 30 किलोमीटर तक का जो एरिया था
1: जी,
0: उस पे वो डोमिनेट कर रहे थे।
1: अच्छा।
0: और उसमें वहां पे भी उन्होंने कुछ मेजर हाइट्स थी जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था।
1: अच्छा।
0: और अगर हम द्रास के आगे मतलब सियाचिन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, कारगिल से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए द्रास आता है, द्रास का कारगिल आता है, फिर उसके बाद आगे जो है चोरबाटला बटालिक सेक्टर आता है, तो वहां पे भी घुसपैठ इन्होंने करी थी और वहां पे भी जो है इन्होंने कुछ हाइट्स वगैरह थी जिन पे कैप्चर किया हुआ था। तो अब एक एक करके जो है और कई जगह एक साथ जो है हर जगह जो है इंडियन आर्मी लड़ रही थी और इनको वहां से निकाल रही थी,
1: खदेड़ रही थी
0: पीछे हटा रही थी। अभी क्या हो रहा है कि जब हम अपने एपिसोड्स में जो जिक्र करते हैं
1: जी,
0: हमने कुछ खास जगह के बारे में ही हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन और भी जो है काफी जगह है और काफी सारी बटालियंस भी थी। अभी हमारे सामने तो कुछ ही बटालियंस का नाम आता है जिनका हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने हम आप यकीन मानिए जितनी हम बात कर रहे हैं उससे कम से कम नहीं तो 3 से 4 गुना ज्यादा फोर्सेस थी सिर्फ इन्फेंट्री की।
1: जी सर, ऐसा बोला जाता है ना कि यदि हम युद्ध लड़ते हैं और हमें जीतना है तो 1:3 का रेशियो होना चाहिए।
0: 1:3 का माउंटेंस में तो होना ही होता है,
1: पहाड़ी पर हो जाती है ये चीज तो 1:15 तक चले जाते हैं।
0: यू आर राइट, डिपेंड करता है। देखिए ना अभी हमने जिक्र किया था टाइगर हिल का, तो उसमें जो है एक कंपनी के अगेंस्ट 3 बटालियंस गई थी। काफी आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला
1: सर। एक प्रश्न और भी मेरे मन में आता है सर, ये हम एपिसोड इसको समअप करें इसके पहले, कि तोप का उपयोग इस युद्ध में, कारगिल युद्ध में विशेष रूप से बहुत अधिक हुआ और मतलब सदुपयोग किया गया उसका, तोप का और चर्चित नाम बोफोर्स का उपयोग, क्या पहली बार हुआ है इस तोप का उपयोग?
0: नहीं, ये तो देखिए बोफोर्स हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें एक जो बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी थी वो था डायरेक्ट फायरिंग वेपन से। क्या होता है जब आर्टिलरी फायर होता है, इट इज अ पैराबोलिक जो दूर जाके जो गिरता है। इसमें क्या हुआ था कि हमें जो सामने दिख रहा था बंकर, जो संगर दिख रहे थे, उसमें मतलब आर्टिलरी शेलिंग इस तरह से हुई थी कि ये डायरेक्ट फायर किया था, तो ये एक अलग तरह से उपयोग था। दूसरा, इसमें जो है काफी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था जो फायरिंग में, बहुत सारी गन्स वगैरह का एक साथ इस्तेमाल हुआ था, तो उसका जो इम्पैक्ट था हमें समझ में आया था कि आर्टिलरी कितना मतलब डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तो वो एक हम लोग को एक लेसन सीखने को मिला था। यू आर राइट, इसके कारण जो है बोफोर्स काफी उसका नाम आया था।
1: हाँ, जी, बहुत चर्चित हुआ था,
0: बहुत चर्चित हुआ था, एंड इट इज अ वेरी गुड गन।
1: सर, सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग बात ये लगती थी कि इन तोपों को वहां तक ले जाना, युद्ध भूमि तक ले जाना बहुत बड़ी चुनौती था।
0: जी हाँ, वो तो है। दूसरा क्या होता है कि जब आप फायर होता है, आर्टिलरी फायर होता है, तो उसकी जो लोकेशन होती है गन की, वो इमीडिएटली दुश्मन पता कर लेता है।
1: जी,
0: उसके लिए क्या होता है कि इमीडिएटली गन्स को मूव करना होता है, क्योंकि काउंटर बम्बार्डमेंट आएगा आपके पे, दोबारा अटैक होगा, तो उसके लिए ये जो गन्स होती है फोर्स, क्योंकि इनके पास मोबिलिटी है, ये भी एक कारण था कि उसके कारण काफी है
1: सफल रही हैं,
0: क्योंकि इनके पास अपना जो है कैपेबिलिटी होती है मूवमेंट की होती है, तो फायर करने के बाद
1: एक स्थान से दूसरे स्थान पर
0: चले जाते हैं। जी, दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस गन।
1: तो सर, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम आम इंसान इन सब चीजों को जान सके। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, युद्ध जीतना और तिरंगा फहराना तो हमने देखा है टीवी पर और सब, लेकिन इसके पीछे जो एक कहानी है, जो एक गौरव है, जो एक पराक्रम है, उसी को हम उजागर करना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के से।
0: बहुत ही अच्छा बोला आपने, जैसे सिर्फ जो लड़ रहे हैं
1: जी,
0: उनके साथ एक बहुत एक इंसान होता है जो पोर्टर्स होते हैं, सिविल पोर्टर्स होते हैं, जो एमिनेशन कैरी करते हैं, राशन कैरी करते हैं, वो वहाँ के लद्दाख के लोकल्स होते हैं,
1: उनका भी उतना ही बड़ा योगदान,
0: उनका बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी,
0: क्योंकि वो अगर एमिनेशन लेके जाना, रसद लेके जाना और कैजुअल्टी इवन इवैक्यूएशन में मदद करना, दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी मेजर रोल। तो उसी तरह से बाकी जो है इसमें इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स है, कम्युनिकेशंस डेवलप करना है, ऑर्डिनेंस का काम है, एमिनेशन सप्लाई करना है, राशन सप्लाई करना है, तो इट इज अ वेरी कोहेसिव काइंड ऑफ जॉब,
1: सबका समन्वय है
0: तो ईच एंड एवरी वन मतलब जिन्होंने काम किया इसके लिए वो सभी तारीफ के काबिल हैं।
1: ऑपरेशन विजय जो है इन्हीं की विजय है।
0: बिल्कुल इनकी विजय है, 100% इनकी विजय है।
1: तो श्रोताओं, ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहाँ हर परिस्थिति हर बात दुश्मन के पक्ष में थी, लेकिन युद्ध का परिणाम दुश्मन के पक्ष में नहीं रहा। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के पराक्रम का परचम एक बार फिर बुलंद किया, जो शुरू हुआ था छल कपट और विश्वासघात की बुनियाद पर, लेकिन खत्म हुआ भारतीय सेना के वीरता, विश्वास और विजय के साथ। ये लड़ाई जमीन के एक टुकड़े की जंग नहीं थी, ये जंग थी देश के अभिमान की, स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की। ये जंग थी दुश्मन को उसकी हदें बताने की, हमारी सरहदों की रक्षा की। इस युद्ध की बातें आगे भी जारी रहेंगी हमारे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। धन्यवाद सर इस कार्यक्रम के लिए।
0: जय हिंद पूर्वा एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: जय हिंद सर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मेरे साथ थे लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सेवानिवृत्त, जो हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे थे, और मैं थी आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा घर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। अगले कार्यक्रम की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करने जा रहे हैं विश्वविख्यात पंडवानी लोकगीत और नाट्य की मशहूर कलाकार तीजन बाई जी को, जो अब हमारे बीच नहीं रहीं।
1: कभी भी याद करोगे तो आप लोगों के पास हम दौड़े चले आएंगे।
0: तीजन बाई जी का जन्म हुआ 8 अगस्त 1956 को दुर्ग में। वो छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार रहीं। उन्हें सन 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1995 में दिया गया। 2003 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

0: ये प्रस्तुति उन्होंने दी थी भोपाल में आयोजित लोक रंग में सन 2023 में।
1: आज आए हुए माता और बहन भाई, बड़े बुजुर्ग, बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ,

सारे जिंदगी नहीं छोड़े तो नहीं छोड़े, अरे बुढ़ापा आए तो कम से कम छोड़ दिया जाए, पर भी नहीं, चलिए क्या करें, काम कर सकूं कि ना चल कर सकूं, चल सकूं, पर आप लोगों के प्यार पाकर थोड़ा थोड़ा चलने के लिए तैयारी करी। और धन्य है मेरे भाग के जिस एज में मुझे काम करने के लिए मौका मिला। तो हम सब मिलजुल के चले कुरुक्षेत्र मैदान के ओर, जहां कौरव और पांडव की लड़ाई तैयारी थी। अब भाई भाई में कितनी परेशानियां हैं, यदि वही मिलजुल के रहते हैं तो महाभारत काल नहीं होता। तो चले हम कुरुक्षेत्र की तरफ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।

और कौरव मल्ले मारत रहे। कौरव चिल्ला पड़ेगा, बचाओ, कोई है बचाओ।

0: भेद के लाके मौला दुशासन आज सातवां दिन के लड़ाई पहला मेल मुलाकात की है
1: भाई
0: दादा।

0: बैठ के पूजा दोनों हाथ में पूजा पकड़े रहे शासन चिल्लाने
1: का
0: बचाओ। अरे कोई है बचाओ, पर वहां कोई बचाने वाला नहीं।

0: कैसे बोकर बोकर देखा था सियार।
1: हाँ भाई
0: नकुल कहे भैया मैं कह कर।

Martin.

बोलना नकुल चुप खड़े रहे प्रपति के गुस्सा के मारे नकुल के बोलती बंद द्रौपदी पूछे जाते क्या तोला भूख लगे रही से ते रोटी खाए लाए हस का कैसे

0: भूख लगती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो पहले से बता दिया होता,
1: मोबाइल कर दिया।
0: मैं रोटी के गट्ठा लेके, नकुल कहे मैं रोटी खाने नहीं आया हूँ,
1: तो
0: मैं अपने मन से भी नहीं आया हूँ। हाँ, गदाधारी भीमसेन, गदाधारी भीमसेन बोले हाँ, गदाधारी भीम भैया मुझे भेजे। द्रौपदी बोले किस लिए?
2: क्यों
1: भाई
0: द्रौपदी?
1: हाँ,
0: चुपचाप सुनेगी तो बता सकता हूँ, और ऐसे जोर लगा के चिल्लाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
1: बताइए।
0: तो बोलिए बोलिए, बात क्या?
1: हाँ होगा।
0: गदाधारी भीमसेन इसलिए मुझे भेजे गए हैं कि भैया दुशासन ले पछाड़ के भुजा उखाड़े पर तैयारी।
1: हाँ।
0: तो

0: खुजा वो खाने पर तैयारी है
1: होगा
0: बलाय के बात सुने द्रौपदी अपने

0: भीम के ताकत के डबल।
1: वाह भैया,

0: जब पकड़ के केस घसीटते हुए मुझे दरबार में लाया गया।
1: ओ भाई,
0: यही तेरा भुजान का दूसरा सन, चारों तरफ सन्नाहा छाए रहे, एक शब्द कोई ना बोले। किसी के पास ताकत नहीं ताकि द्रौपदी के सामना कर सके। काली के समान द्रौपदी रूप धारण करने वाली श्री कृष्ण देख के बाप रे बाप, द्रौपदी मान गई तो मान गई और किसी के बात में कोई ध्यान नहीं देगी। हाथ में खड़ंग और खप्पर लेके कौरव पांडव कूद गई तो सोच लो मुनि के तरह सेना ने काट काट के खप्पर में भरा दे। श्री कृष्ण चारों तरफ देख के कहे,
1: हाँ
0: द्रौपदी,
1: हाँ हाँ भाई
0: द्रौपदी,
1: हाँ
0: अब ये द्रौपदी, द्रौपदी सुन हो गए,
1: हाँ होगा।
0: दुशासन के शकल देखते देखते होश हाँस खो गए, एक शब्द किसी के बात में ध्यान नहीं देते रहे।
1: हाँ
0: भगवान जोर से चिल्लावे, अब ये द्रौपदी आपका दायित्व, द्रौपदी चौक से गई। द्रौपदी
1: हाँ
0: मेरी बात में ध्यान देगी, थोड़ा सुन लीजिए द्रौपदी, तू जो करने जा रही है ना ये तो बड़ा खतरा है।
1: हाँ भाई,
0: भगवान कृष्ण जी द्रौपदी नहीं माने, दोनों हाथ ले जोड़ के

0: आपके सामने जो मेरी दुर्गति हो रही थी, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं।
1: भाई
0: हमारा ही परिवार हमारा ही बीच में जो मेरे हालत खराब कर रहे थे,
1: भाई
0: कोई कहने वाला नहीं। हे गिरधारी, आप तो मुझे मना रहे हो, पर एक एक बाल यही कह रही है कि रक्त में स्नान करने के बाद भी मैं कमी है। हे कन्हैया, हे गिरधारी, अपनी छोटी बहन समझकर मुझे क्षमा कर देना, गुस्सा करना ठीक नहीं। भगवान कृष्ण ने कहकर कहे है, गदाधारी भीम, यदि आप नहीं रहते तो मेरा मनोकाम पूरा नहीं हो पाती। धन्य है मेरे भाग, आप जैसे मुझे पति मिला, ताकि मैं आत्मा मोर तड़फत रही से वो आत्माला शांति दिलाए के खाती। आपने जो ये काम किया, ये काम सबसे बड़ के काम है। ये कहकर द्रौपदी भगवान कृष्ण ने कहे, महाराज।

0: रात के कथा यहीं तक समाप्त। कभी भी याद करोगे तो आप लोगों के पास हम दौड़े चले आएंगे। हाँ, हम यही क्षमा चाहते हैं कि पहले के समय जो हम काम करते थे वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। जो आवाज है वही आप लोगों को दे रही हूँ। सभी जन से मैं क्षमा चाहती हूँ, प्रणाम करती हूँ।
1: ये था आज का विशेष कार्यक्रम जो केंद्रित था विश्वविख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई पर। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: उद्योग, व्यापार ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और भारत देश औद्योगिकी में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रमुख संस्थानों पर आधारित है हमारा कार्यक्रम देश के संस्थान। तो सुनिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप?
2: दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
3: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट पहले आराम से बैठ जाओ।
2: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि ये संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
3: हाँ हाँ जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
2: ओके दादाजी।
3: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: अच्छा दादाजी, यानी आज की कहानी वैज्ञानिकों, मिसाइलों और देशभक्ति की होगी?
3: हाँ बेटा, और साथ ही ये कहानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सपनों और भविष्य से भी जुड़ी हुई है।
2: तो फिर दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
3: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को की गई थी। उस समय भारत ये समझ चुका था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
2: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना? तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
3: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
2: वो तो है दादाजी।
3: वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पिडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
2: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
3: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
2: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
3: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
2: लेकिन दादाजी, एक बात अभी भी मेरे मन में है।
3: पूछो।
2: जब मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से खरीदे जा सकते थे, तब भारत को अपनी अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
3: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी परीक्षा कल है, तुम्हें पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो तुम जब चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें हर बार किसी दूसरे से किताब मांगनी पड़े तो क्या होगा?
2: तो ये हो सकता है कि समय पर किताब ही ना मिले।
3: बिल्कुल, ऐसे ही अगर परीक्षा के ठीक पहले कोई दोस्त किताब देने से मना कर दे, तब
2: तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
3: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
2: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
3: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
2: कैसा सपना दादाजी?
3: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
2: तो दादाजी, BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
2: दादाजी, क्या सन 70 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
3: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
2: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
3: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
2: दादाजी, अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू, अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
3: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
2: हाँ दादू।
3: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है, ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
2: दादू, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
3: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
2: अब समझी। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
3: सबसे पहले सुनो बेटा आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है,
2: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
3: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है, ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
2: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
3: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
2: वो तो है।
3: हाँ बेटा देखो, आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
2: दादू, मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
3: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसे लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
2: अच्छा।
3: हाँ।
2: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइलों से खोजती कैसे होगी?
3: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
2: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
3: बिल्कुल वैसा ही।
2: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
3: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
2: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
3: हाँ हाँ,
2: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
3: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तर बंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
2: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
3: हाँ
2: दादू, ये किस तरह की तकनीक है?
3: इसका मतलब है कि बेटा, एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो स्वयं लक्ष्य का पीछा करती है, उसे बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती।
2: दादू, ये तो बड़ी कमाल की मिसाइल है। अच्छा, और ये हेलेना मिसाइल का नाम तो बहुत आधुनिक सा लगता है।
3: क्योंकि ये वास्तव में बहुत आधुनिक है बेटा।
2: अच्छा,
3: हेलेना को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ये दूर स्थित टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में बहुत सक्षम है बिटिया। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलिना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
2: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है, और हेलिना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू, समुद्र में क्या होता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
2: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
3: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
2: दादू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
3: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
2: अच्छा?
3: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही हैं बेटा।
2: तो दादाजी, क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर, इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
2: दादू, ये तो कमाल है भाई, मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
3: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
2: दादू, क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
3: नहीं नहीं बेटा, भारत को क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
2: अच्छा?
3: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
2: दादू, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
3: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
2: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
3: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
2: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
3: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
2: रोबोट सचमुच?
3: हाँ हाँ, आज BDL अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
2: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था, क्या इसका भी BDL से कोई संबंध है?
3: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग।

0: निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
0: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
1: दादू, आपने पहले आईडेक्स का नाम लिया था?
0: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
1: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना लेना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
0: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने, कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
1: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
0: लाभ ही लाभ है बेटा, विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
1: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
0: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
1: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
0: अच्छा,
1: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जिज्ञासा, अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और असफलताओं से कभी ना घबराना, समझी?
1: समझ गई। अच्छा ये बताइए,
0: हाँ,
1: कि आने वाले भविष्य की मिसाइलें कैसी होंगी?
0: बहुत रोचक सवाल है। भविष्य में हम देख सकते हैं अधिक बुद्धिमान प्रणालियां, AI आधारित निर्णय क्षमता, अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, मानव रहित युद्ध प्रणालियां, उन्नत सेंसर तकनीक।
1: और संभव है कि इसमें भी कुछ तकनीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में आज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
0: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया। याद रखो, हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
1: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
0: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
1: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
0: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने, आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
1: ओ दादू, आपका बस चले ना, तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
0: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
1: दादाजी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
0: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो जल्दी से घर चलो बेटा।
1: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
0: हाँ बेटा।
2: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
0: और दीपक नेमा
2: को दीजिए आज्ञा।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज़ाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका इतिहास फिर से आपके साथ, आपके पास। अरे, मगर आज हमारी तारीख कहीं दिखाई नहीं दे रही।
1: नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं आपकी तारीख रोज की तरह सही वक्त पर फिर आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ।
0: सही वक्त पर?
1: जी हाँ इतिहास जी, बिल्कुल सही वक्त पर। अरे भाई, आप मुझे नहीं देख पाए, लेकिन मैं यहाँ आपकी नजरों से ओझल होकर छुप कर बैठी हुई थी।
0: अच्छा, तो आज किसी आजादी के मतवाले की कहानी सुनाने के बजाय कहीं आपका इरादा छुपा छुपी का खेल खेलने का तो नहीं है?
1: अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, आप ही ने तो कहा था ना कि आज आप एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिनका नाम इतिहास के साथ साथ ब्रिटिश मुकदमों में भी बराबर में दर्ज है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें और अपने श्रोता साथियों को उन्हीं बंगाल के क्रांतिकारी आशित भट्टाचार्य के बारे में बताने वाला हूँ। यही मेरा इरादा है।
1: इसीलिए मैं छुप के देख रही थी के गुप्त रहकर भी कैसे काम किया जा सकता है या अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारी और भारत माँ के सपूत किया करते थे।
0: अरे वो इस तरह की लुका छिपी का खेल नहीं होता था भाई। देखो मैं बताता हूँ, तारीख ये सशस्त्र क्रांतिकारियों की अलग धारा का इतिहास है जिसमे पंजाब और बंगाल की एक अलग ही भूमिका है, अलग नेतृत्व है, जिन्हें भारत को आजादी दिलाने का एक अलग ही जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था।
1: वाह, जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था, और इतिहास इसी जुनून, दीवानगी और पागलपन ने हमारी आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना? और यही जुनून और पागलपन आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर क्रांतिकारियों में भी भरा हुआ था।
0: बिल्कुल सही, आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर तब सामने आए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हजारों हजार छात्र जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का त्याग कर चुके थे, गांधी जी के अहिंसक आंदोलन को असफल मान बैठे थे, लेकिन उनके सामने अभी भी क्रांतिकारी संगठन और गुप्त समाज के अपने कार्यभारों की रूपरेखा पर्चों और कलकत्ता के ही एक अखबार युगांतर के माध्यम से प्रस्तुत हो रही थी और किशोरों और नवयुवकों को भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।

0: आशित भट्टाचार्य महज 17-18 बरस की उम्र में ही हथियारों से लैस था।
1: सिर्फ शस्त्रों से ही नहीं तारीख, बल्कि उनके दल पर एक और अहम जिम्मेदारी थी, संगठन के लिए कोष जमा करना। और चूंकि सशस्त्र क्रांतिकारी अपना परिचय गुप्त रखते थे, इसलिए वे आम जन या धनिकों के पास जाकर चंदा उगाही भी नहीं कर सकते थे, और न ही किसी को लूट कर या ठग कर ही पैसा हासिल कर सकते थे। तो उनके सामने ले देकर एक ही रास्ता बचता था, और वो था ब्रिटिश संस्थाओं की लूट। यही एक रास्ता था रकम उगाही का।
0: इसी कारण से आशित भट्टाचार्य और उनके दल ने बंगाल के गांव इटाखोला डाकखाने से निकलने वाले डाक थैलों को लूटने की योजना बनाई।
1: बिल्कुल, हम इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आशित भट्टाचार्य ने ये योजना ब्रिटिश सरकार पर हमले के लिए ही बनाई होगी। आम लुटेरा तो किसी को भी लूट सकता है, पर ये दल तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा से ओतप्रोत था, और आशित भट्टाचार्य और उसके साथी सशस्त्र क्रांति के ही एक अंग थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के जोश से भरा एक समूह थे। लेकिन एक बात है तारीख, ऐसे क्रांतिकारियों और देशमाता के सपूतों की कुछ असफलताओं का कारण ये भी था कि उनकी आम जनता के बीच कोई पहचान नहीं थी। अर्थात आम लोग ये नहीं पहचान पाते थे कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है वो हमारी आजादी के लिए लड़ रहा है। गोपनीयता ने उन्हें आम जन से काट के रख दिया था। और दूसरी बात ये कि आक्रमण के अलावा उनके पास अन्य कोई आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं थे जिनसे आम जनता के हित जुड़े हों और जिससे वे सशस्त्र क्रांति को गलियों और चौराहों पर ला सकें।
0: पर्याप्त भौतिक साधनों से हीन पुलिस के निर्मम दमन के शिकार ये छुटपुट और अल्पसंख्यक भूमिगत गुप्त संगठन अपनी गतिविधियों में मुख्य रूप से छात्रों, गरीब शहरियों और बुद्धिजीवियों को लेने की ही कोशिश किया करते थे। आशित भट्टाचार्य खुद भी सिलहट गांव से पढ़ने आया था और एक गरीब शहरी छात्र था, और तो और उसके तीन और साथी भी टिपरा गांव के ही थे।

0: पहले तो आशित और उसके साथी प्रतिदिन निरीक्षण करते रहे और पता लगाते रहे। तब उन्हें पता लगा कि डाक के थैलों में बीमा किए हुए लिफाफे भी ले जाए जाते हैं जो पैसों से भरे होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक निहत्ता चपरासी ही अकेला इन्हें स्टेशन तक ले जाया करता है और इटाखोला से रेलवे स्टेशन के बीच एक जंगल भी पड़ता है। बस फिर क्या था, वही हमले की योजना बनाई गई।
1: और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इटाखोला डाकखाने को लूटने की योजना बनाई।
0: बिल्कुल, ये दिन दहाड़े होने वाली लूट ही थी जिसका खामियाजा इस दल को आगे भुगतना भी पड़ा। वो सभी पकड़े भी गए और पहचान भी लिए गए, और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये थी कि आम जनता ने भी उनकी राष्ट्रीय भावना को नहीं पहचाना और उन्हें आम लुटेरे समझ के पकड़वाने में मदद भी की।
1: मदद ही नहीं बल्कि खुद ही जाकर पुलिस को सौंप भी आए।
0: इस तरह की घटनाओं को देखकर ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सशस्त्र क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण उनकी गोपनीयता भी थी, जिसके चलते जनता क्रांतिकारियों और लुटेरों में फर्क नहीं कर पाती थी। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी थी।
1: लेकिन सोचो कितने महान थे वो सशस्त्र क्रांतिकारी जो अपनी पहचान छुपाकर बिना किसी यश के सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लड़ते थे।

0: हाँ,
1: तो चारों ने योजना बनाई और शस्त्रों से लैस होकर इटाखोला डाकखाने के चपरासी का इंतजार करने लगे। और दूसरी तरफ से चपरासी भी निकल चुका था। डाकखाने के चपरासी का बयान था कि जब वो थैला लेकर डाकखाने से निकला तो सामने से एक युवक बोतल लेकर आता दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक और नौजवान पीछे से आया और चपरासी को धक्का देकर गिरा दिया। जब वो खड़ा होने को हुआ तब पीछे से उसके सर पर वार किया गया। वो फिर गिरा और तब एक झाड़ी के पीछे से चार नौजवान और निकले और डाक थैला लेकर भाग निकले। तब तक चपरासी बेहोश हो चुका था।
2: हाँ, और इस बयान से ये पता चलता है कि वो कुल मिलाकर 6 नौजवान थे, यानी कि दल 6 लोगों का था।
1: हाँ, आशित भट्टाचार्य और उसके 5 और साथी। कुछ और गांव वालों का बयान था कि चपरासी को मारकर थैला छीनकर भागते हुए इन लोगों को पास के खेत में काम कर रहे किसानों ने भी देखा। वो किसान आशित और उनके साथियों को पकड़ने के लिए शोर मचाते हुए भागे, जिसके कारण कुछ और गांव वाले भी आशित और साथियों के पीछे भागे। सारे लोग आशित और उसके साथियों के पीछे थे और बस यही वो पल था जब आशित ने पकड़े जाने के डर से कट्टा निकालकर गोली चला दी।
2: इसमें एक गांव वाला मारा गया जो कि एक सरकारी कर्मचारी था। आखिरकार गांव वालों ने इन युवकों को पकड़ ही लिया और बिना कुछ समझे बूझे पुलिस के हवाले कर दिया
1: और आशित और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। आशित के 3 साथियों को उम्र कैद, 2 साथियों को कुछ समय का कारावास और आशित भट्टाचार्य पर जान लेने का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी की सजा सुनाई गई।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यूनिंग किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रेडियो आजाद हिंद के सफर में मैं हूँ आपके साथ भारती। लीजिए प्रस्तुत है राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत ये देशभक्ति रचना।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक दिग्गज थे। उनकी बौद्धिक प्रतिभा भी किसी भांति कम न थी। मनुष्यों और अन्य बातों का वे सूक्ष्म पर्यवेक्षण करते थे। नव भारत के जन्म तथा विकास में उनके विचारों का सर्वाधिक योग रहा है। भारत के कोटि कोटि संघर्षरत मानवों के प्रति उनका प्रेम और सहानुभूति केवल गहरी ही नहीं अपूर्व भी थी।
1: एक और आध्यात्मिक जगत में उनकी पहुंच तथा उपलब्धियां इतनी महान थीं, तो दूसरी ओर निर्धनों तथा असहायों के लिए उनका हृदय रोता था। दीन दुखियों के प्रति इसी करुणा ने स्वामी जी को आर्थिक प्रश्नों तथा समस्याओं पर सतत चिंतन करने को बाध्य कर दिया था। इसीलिए जो लोग स्वामी जी की विचार सारिणी का सुव्यवस्थित अध्ययन करना चाहते थे, उन्हें इस महान हिंदू संत के अर्थनीतिक विचारों से भी परिचित होना पड़ेगा।
0: आधुनिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग आदि के विकास ने आधुनिक अर्थशास्त्र और अधुनातन धार्मिक जीवन को जन्म दिया है। अतः आज के अर्थशास्त्र के प्रति इन महान सन्यासी के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें पहले आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के प्रति उनके दृष्टिकोण को देखना होगा। ये उद्धरण इस दृष्टिकोण के अध्ययन में सहायक होंगे।
2: आज हमारे राष्ट्र को जरूरत है कार्य में क्षिप्रता की, ऐसी प्रतिभा की जो वैज्ञानिक आविष्कार कर सके। इसलिए मेरी इच्छा है कि हमारे युवा इलेक्ट्रीशियन बने, भले ही वो उसमें सफल न हो सके, पर मुझे इसी बात पर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने बड़ा बनने का और अपने देश के लिए उपयोगी सिद्ध होने का प्रयत्न किया। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आधुनिक विज्ञान से अपरिचित एक नीम हकीम के हाथों चंगा होने की आशा रखने के बदले किसी वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक के हाथों मर जाना अधिक अच्छा है।
1: सर जगदीश चंद्र बसु के प्रति स्वामी जी के मुख निर्गत उद्गार भी यहाँ उल्लेखनीय है। सन 1900 ईस्वी में पेरिस प्रदर्शनी के दौरान हुए वैज्ञानिकों के सम्मेलन में आमंत्रित होकर गए बसु महाशय को देखकर स्वामी जी ने लिखा था,
2: और मेरी जन्मभूमि इस जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इटली आदि बुद्ध मंडली मंडित महाराजधानी में तुम कहां हो बंग भूमि? कौन तुम्हारा नाम लेता है? कौन तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा करता है? उन अनेक गौरांग प्रतिभा मंडली के भीतर से बंगभूमि, हमारी मातृभूमि के यशस्वी वीर युवा ने अपने नाम की घोषणा की। वो वीर संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हैं। अकेले इस बंगाली युवा वैज्ञानिक ने आज विद्युत वेग से पाश्चात्य मंडली को अपनी प्रतिभा से मुग्ध कर दिया। वो विद्युत संचार जिससे उन्होंने मातृभूमि के मृत प्राय शरीर में नवजीवन का तरंग संचार कर दिया, संपूर्ण वैज्ञानिक मंडली के शीर्ष स्थानीय है जगदीश चंद्र बसु, भारतवासी, बंगवासी, धन्य है वीर।
0: यूरोप के मार्ग से दूसरी बार अमेरिका जाते समय स्वामी जी ने अपनी यात्रा के रोचक संस्मरणों को परिव्राजक नामक पुस्तक में निबद्ध किया है। इन संस्मरणों में ऐसे प्रसंग हैं जिनसे मशीन, यंत्र आदि के प्रति स्वामी जी के दृष्टिकोण का पता चलता है। इस प्रकार के कुछ विचारों को हम सुनेंगे।
2: जहाज का आविष्कार किसने किया? किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। तात्पर्य ये है कि उन सभी मशीनों की भांति जो मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, जहाज भी सामूहिक श्रम की उपज है। इस सामूहिक श्रम के बिना क्षण भर के लिए भी मनुष्यों का काम नहीं चल सकता, और कारखानों की तरह तरह की मशीनें इसी श्रम के परस्पर योग और अदल बदल से जन्मी है। उदाहरण के लिए चक्कू को लो, कितने अनिवार्य हैं वे, चरमराती बैलगाड़ी से लेकर जगन्नाथ के रथ तक, करघे से लेकर कारखानों की भीमकाय मशीनों तक, सब जगह चक्के की उपयोगिता है। मशीनों का थोड़ा सा अनुपात अच्छा है, पर उसकी अधिकता मनुष्य की कार्य प्रेरणा को खत्म कर देती है और उसे भी निर्जीव मशीन बना देती है। कारखानों में मनुष्य दिन पर दिन, रात पर रात, वर्ष भर वही एक सा प्राणहीन कार्य किए जा रहे हैं। उनका एक एक दल कार्य के अंश विशेष में जुटा हुआ है, जैसे पिन की घुंडियां बनाना या धागे के दो छोरों को जोड़ना अथवा तागे बाने के साथ आगे पीछे आना जाना, और यह क्रम सारा जीवन चलता रहता है। परिणाम यह होता है कि यदि वो विशेष काम बंद हो जाए तो उन्हें जीविकोपार्जन का दूसरा कोई तरीका नहीं सूझता और वे भूखों मरती हैं। मशीन के समान एक सा कार्य करते रहने से मनुष्य स्वयं निर्जीव मशीन सा हो जाता है।
1: इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्वामी जी मशीनों के अंधभक्त न थे। उन्होंने मशीनों के पक्ष में जो कुछ कहा वो सर्वथा विचारपूर्ण है। स्वामी जी की यह निश्चित धारणा थी कि भारतीयों को पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता को भी अपनाना होगा। स्वामी जी के इसी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में हमें इन उद्धरणों पर विचार करना होगा।
0: आधुनिक जीवन में व्यापार के महत्व के प्रति विवेकानंद पूरी तरह सजग थे। 1895 ईस्वी में न्यूयॉर्क से एक पत्र में लिखते हैं,
2: देव बाबू से कहना कि इंग्लैंड और अमेरिका में मूंग तथा अरहर दाल का अच्छा खासा व्यापार चल सकता है। यदि बनी हुई दाल उनके सामने ठीक ढंग से रखी जाए तो उसका काफी चलन हो जाएगा। यदि दाल के छोटे छोटे पुड़े बना दिए जाएं और उन पुड़ों में दाल बनाने की विधि छाप दी जाए, यदि इन पुड़ों को ग्राहकों के घर पर भेजा जाए और कहीं पर छोटी सी दुकान खोल ली जाए तो अच्छा खासा व्यापार चलाया जा सकता है। यदि कोई एक व्यापारिक संघ बना ले और भारत से इस देश में विक्रयार्थ वस्तुएं ले आए तो उसका व्यापार उत्तम रीति से चल सकता है।
1: शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी के एक शिष्य थे। वे लड़कों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। स्वामी जी ने उन्हें किसी व्यापार में लग जाने को प्रेरित किया था। स्वामी जी ने कहा था,
2: यदि तुम सांसारिक मनुष्य की भांति रहना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो अमेरिका चले जाओ। मैं तुम्हें आवश्यक निर्देश दे दूंगा। तुम देखोगे कि 5 ही साल में तुमने काफी कमा लिया है।
1: इस पर शिष्य ने पूछा था,
3: मैं वहां किस चीज का व्यापार करूंगा? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। पैसा कहां से आएगा?
1: तब स्वामी जी ने उनसे कहा था,
2: क्या मूर्खता की बातें करते हो? तुम में अदम्य शक्ति भरी है। केवल मैं कुछ नहीं हूं करते रहने से तुम सचमुच निर्बल हो गए। तुम्हारी अकेले की ही बात नहीं, सारी हिंदू जाति वैसी हो गई है। एक बार विश्व का भ्रमण करके तो देखो, देखोगे कि दूसरे देशों का जीवन प्रवाह कितनी उद्दामता से बह रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी दो, मुझे नौकरी दो चिल्लाते हुए तुम दूसरों का दरवाजा खटखटाते फिरते हो।
1: उसी दौरान स्वामी जी ने यह भी कहा था,
2: तुम्हारे पास टिकट का पैसा नहीं है तो खलासी का काम करते हुए विदेशों में जाओ। भारत में बने कपड़े, तौलिए, बांस का सामान और अन्य देशी चीजें ले जाओ और यूरोप एवं अमेरिका की सड़कों पर फेरी लगाओ। तुम देखोगे कि आज भी विदेशी बाजारों में भारतीय चीजों की कितनी पूछ है। मुझे अमेरिका में हुगली जिले के कुछ लोग मिले जो इसी प्रकार भारत में बनी चीजों की फेरी लगा लगा कर आज धनी बन गए हैं। तुम में क्या उन लोगों से भी कम बुद्धि है? उदाहरण के लिए सुंदर बनारसी साड़ियों को ले लो। संसार के अन्य किसी भी भाग में उस प्रकार की साड़ी नहीं बनती। अमेरिका में उन साड़ियों को ले जाओ और साड़ियों के वस्त्र के गाउन बना बना कर बेचो, फिर देखना कि तुम कितना कमाते हो।
0: इन उदाहरणों से ये पूर्णतः स्पष्ट है कि यद्यपि स्वामी जी एक सन्यासी थे, आध्यात्मवादी थे और जीवन के कुछ पहलुओं के प्रति यथार्थ अर्थों में रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे, फिर भी विज्ञान, इंजीनियरिंग, मशीन, वाणिज्य आदि के प्रति उनका दृष्टिकोण नितांत आधुनिक था। परिवारजक पुस्तक के इस उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है।
2: प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता को उसके अधुनातन स्वरूप पर ले जाने में जो बातें कारण स्वरूप रही हैं, उनमें भारत के वाणिज्य का स्थान कदाचित सबसे महत्वपूर्ण है। स्मरणातीत काल से भारत उपज और उद्योग वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे आगे रहता आया है। एक ही शताब्दी पूर्व की बात है, सूती वस्त्र, कपास, जूट, नील, लाख, चावल, हीरे, मोती आदि संबंधी विश्व की समूची आवश्यकता एकमात्र भारत ही पूरी करता रहा है। भारत के समान उत्कृष्ट कोटि के रेशमी और किनखाब जैसे ऊनी वस्त्र बनाने वाला देश और कोई नहीं रहा है। यहाँ की लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल और जावित्री आदि प्रसिद्ध रही है। अतः स्वभावतः बहुत पुरातन काल से जो भी देश जिस किसी युग में सभ्यता के आलोक से आलोकित हुआ, तब उसे उन सब सामग्रियों के लिए भारत पर ही निर्भर रहना पड़ा। ऐ भारत के श्रमिक वर्गों, ये तुम्हारे ही निरंतर नीरव श्रम का फल है कि बाबिल, फारस, सिकंदरिया, यूनान, रोम, वेनिस, जिनोवा, बगदाद, समरकंद, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड और इंग्लैंड क्रम से प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचे हैं।
1: भारत के आर्थिक जीवन का जो पहलू स्वामी जी के ध्यान को सबसे अधिक आकर्षित करता है, वो है गरीबों की समस्या। वे कहते हैं, भारत में सारी विपत्तियों की जड़ है यहाँ के जनसाधारण की गरीबी।
2: पूर्व की ज्वलंत आवश्यकता धर्म नहीं है, धर्म उनके पास यथेष्ट है, वो तो रोटी है जिसके लिए भारत के लाखों विपन्न लोग सूखे गले से चिल्ला रहे हैं। वे मांगते हैं रोटी और हम उन्हें देते हैं पत्थर। अनाहार से पीड़ित लोगों के समक्ष धर्म परोसना उनका अपमान करना है। अपने धर्म के क्रिया अनुष्ठानों को फिलहाल ताक पर रख दो और पहले जीवन संग्राम के लिए तैयारी करो। भूखे पेट धर्म की साधना नहीं हो सकती। हम में से जो लोग अभी उच्चतम सत्यों के लायक नहीं हुए हैं, उनमें से अधिकांश के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक तरह का विष रहित हुआ भौतिकवाद वरदान सिद्ध होगा।
0: स्वामी जी का मत था कि लोगों के लिए केवल साधारण भोजन, वस्त्र और आवास अर्थात अनिवार्य आवश्यकताओं की ही व्यवस्था न हो, अपितु उन्हें सुखोपभोग के अवसर भी प्राप्त होने चाहिए। वे कहते थे कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये वांछनीय है। जो लोग मन से भोगों और सुखों की लालसा करते रहते हैं, उन पर आध्यात्मिक उन्नति थोपी नहीं जा सकती।
2: वस्तुओं की असारता देखकर और अनुभव करके उन्हें त्याग देना होगा, यही आदर्श है। जब ये देख लिया कि भौतिक जगत निस्सार और खोखला है, केवल राख से भरा है, तब उसका त्याग करके वापस चले जाना चाहिए। मन मानो वृत्ताकार में इंद्रियों की ओर जा रहा है, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। इस मन को पीछे आना चाहिए, वापस आना चाहिए, इसे निवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति को बंद होना चाहिए और निवृत्ति को कार्यरत, यही आदर्श है। पर इस आदर्श की अनुभूति जीवन के सुखों का कदाचित अनुभव हो जाने के पश्चात ही हो सकती है।
1: एकदम से संपूर्ण त्याग का जीवन अपनाने का जिनमें सामर्थ्य और साहस नहीं है, उन्हें सांसारिक सुखों के खोखलेपन के अनुभव और अनुभूति के लिए अवसर देना चाहिए।
2: परंतु जीवन के प्रति इस मोह को त्यागना बड़ा कठिन है, बहुत कम लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो उपाय बताए गए हैं, एक है नेति नेति का मार्ग और दूसरा इति का। पहला निषेधात्मक है और दूसरा विधेयात्मक। निषेध अर्थात नेति नेति का रास्ता सबसे कठिन है, वो केवल इन्हें गिने बहुत उदात्त मानस वाले प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही साधता है। अधिकांश लोग तो इति का, संसार में से होकर जाने का ही रास्ता अपनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कांटे से कांटा निकालना, बंधनों की सहायता से स्वयं उन्हीं बंधनों को काट डालना।
0: उन्होंने पूरब और पश्चिम की तुलना करते हुए देशवासियों को फटकारा था।
2: पश्चिम के लोगों में रजोगुण का आधिक्य है और इसलिए आज वे सुखोपभोग की सीमा तक पहुंच गए हैं। क्या तुम समझते हो कि उनके बदले तुम योग में सिद्धि प्राप्त करोगे? तुम जो पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हो।
1: हम कह चुके हैं स्वामी जी महान आध्यात्मिक दिग्गज थे। उनमें ये घोषणा करने का साहस था, अंतर्दृष्टि और गहराई थी कि भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति में कोई मौलिक विरोध नहीं है। वे कहते हैं,
2: जब आत्मा की उन्नत शक्ति जड़ पर अपना कार्य करती है तो उससे भौतिक प्रगति होती है, जब वो विचारों पर कार्य करती है तो उससे बौद्धिक विकास होता है, और जब वो शक्ति स्वयं आत्मा पर ही कार्य करती है तब मनुष्य देवता बन जाता है।
0: ये उक्ति उन महान आत्मा विवेकानंद के सबसे गंभीरता तथा उद्बोधक उद्गारों में से एक है। हमारी महान मातृभूमि की उन्नति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम स्वामी जी के इस महत्वपूर्ण कथन के गूढ़ मर्म को कहां तक समझते और क्रियान्वित करते हैं।
1: जैसा हमने देखा कि स्वामी जी के मतानुसार भौतिकवाद और आध्यात्मवाद में कोई अंदरूनी या मौलिक विरोध नहीं है, उसी प्रकार उनके मत से पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं में भी विरोध नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और भविष्य की आदर्श सभ्यता उन दोनों के मिलन से जन्म लेगी।
2: पश्चिम की वर्तमान सभ्यता दिन पर दिन मनुष्यों की इच्छाओं तथा विपदाओं को बढ़ा रही है। दूसरी ओर भारत की प्राचीन सभ्यता लोगों को आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता बता करके उनकी भौतिक जरूरतों को पूरी तौर से सदा के लिए भले न सही पर बहुत अंश में दूर करने में निसंदिग्ध रूप से सफल हुई है। वर्तमान युग में भगवान श्री राम कृष्ण का आविर्भाव इन दोनों सभ्यताओं को एक में मिला देने के लिए हुआ है। आज के युग में मानव को एक ओर जहां अत्यंत व्यवहारिक बनना है, वहीं दूसरी ओर उसे गूढ़ अध्यात्म विद्या भी प्राप्त करनी है। भारत को यूरोप से बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सीखना है और यूरोप को भारत से आंतर प्रकृति को जीतने की कला सीखनी है। तब न हिंदू रहेंगे न यूरोपियन, तब रहेगी वो आदर्श मानवता जो बाह्य और अंतर दोनों प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर चुकी होगी।
0: हम पुनः गरीबी के प्रश्न पर आते हैं। स्वामी जी ने गरीबी के पाप को दूर करने के लिए कौन से उपाय सुझाए हैं? ये उपाय क्रमबद्ध रूप से विवेचित हुए हैं क्योंकि स्वामी जी ने एक अर्थशास्त्री की भांति उन पर वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने का दावा नहीं किया है। तथापि इस प्रश्न पर उनके दृष्टिकोण को हम उनके भाषणों और लेखों से जान सकते हैं।
1: उनके मतानुसार जो प्रथम दो उपाय हम देखते हैं वे हैं पराविद्या अर्थात आध्यात्म विद्या का प्रसार, जिससे वेदांत को व्यावहारिक धरातल पर लाकर लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में उतारा जा सके, और अपराविद्या का प्रसार। वे कहते हैं,
2: हमने ही अन्नदान बहुत किया, अब हम अन्य दो का दान करें, परा और अपराविद्या का दान। कुछ कैमरे, नक्शे, ग्लोब और कुछ रासायनिक द्रव्य इकट्ठा करो। इसके बाद एक बड़ी झोपड़ी, फिर निर्धन जनता को इकट्ठा करो और उन्हें भूगोल एवं खगोल विद्या आदि संबंधी चित्र दिखाओ तथा रामकृष्ण परमहंस की बातें बताओ। संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या है, इस विषय में उनकी आंखें खोलने का प्रयत्न करो। गरीब अपढ़ लोगों के बीच जाओ, उनके घरों में पहुंचो, दोपहर में जाओ, शाम को जाओ, जब भी वे मिल जाएं उनकी आंखें खोलो। पुस्तकें किसी काम की नहीं, उन्हें मौखिक शिक्षा दो।
0: इसी बात को उन्होंने समझाकर कहा है।
2: अद्वैत का एक दोष रहा है कि अब तक आध्यात्मिक स्तर पर ही उसका कार्य होता रहा है, जीवन के अन्य किसी स्तर का उसने स्पर्श नहीं किया, पर अब उसको व्यावहारिक बनाने का समय आ गया है। अब वो और रहस्य बना हुआ ना रहेगा, अब और हिमालय की गिरी कंदराओं में निभृत वनों में सन्यासियों के साथ न रहेगा। उसे अब लोगों के प्रतिदिन के जीवन में उतरना होगा। राजा के महल में और तपस्वी की कुटिया में समान रूप से उसका कार्य होगा। गरीब की झोपड़ी में और सड़क के भिखारी में, सर्वत्र सब में अब उसकी क्रिया होगी। अद्वैत को व्यवहार में लाने का समय अब आ गया है। आओ उसे स्वर्ग के सिंहासन के मर्त्य की भूमि पर ले आए। यही इस युग के लिए ईश्वरी योजना है।
0: स्वामी जी की राय में हमारी गरीबी का एक मुख्य कारण है आलस्य। राजसिक प्रवृत्ति का प्रसार ही उसको दूर करने का उपाय है। वे कहते हैं, असल पाप तो ये आलस्य है जो हमारी गरीबी का मुख्य कारण है।
2: किंतु क्या ये सब जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करना, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और यातायात आदि को बढ़ावा देना कभी संभव हो सकता है यदि मनुष्यों में यथार्थ रजोगुण ना जागे? मैंने सारे भारत का भ्रमण किया पर मुझे इस राजस की अभिव्यक्ति कहीं भी नहीं मिली। सब ओर मैंने तमस ही तमस देखा। लोग तमोगुण से घिरे पड़े हैं। केवल सन्यासियों में ही मैंने इस रजस और सत्व का प्रकाश देखा है।
1: स्वामी जी देशवासियों को शक्तिशाली देखना चाहते थे। उन्हें जगाने के लिए उन्होंने कहा,
2: हर व्यक्ति को बताओ कि उसमें अनंत शक्ति भरी है, कि वो अक्षय आनंद का भागीदार है। इस प्रकार लोगों में राजसिक भाव जागृत करो, उन्हें जीवन संग्राम के योग्य बनाओ और तत्पश्चात उनसे मुक्ति की बात करो।
0: स्वामी जी के अनुसार गरीबी के उन्मूलन का उपाय है वैज्ञानिक उत्पादन के लिए पाश्चात्य अर्थात आधुनिक तरीकों को अपनाना। हमें पश्चिम से वो सब सीखना चाहिए जो हमें जीवन संग्राम के लिए मजबूत बनाएगा। पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपने को शूद्र समझते हुए याचना के स्वर में, मानो उनके उपकारों से दबे हुए से, हम उनसे सब सीखें, क्योंकि हम भी पश्चिम को अध्ययन ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और इस क्षेत्र में उनके गुण बना सकते हैं।
2: तो क्या हमें पश्चिम से कुछ नहीं सीखना है? क्या हम पूर्ण हो चुके हैं? हमें अभी भी कई बातें सीखनी हैं। मरते दम तक हमें नई और उच्चतर बातों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं एक कट्टर की तीव्रता चाहता हूं और साथ ही भौतिकवादी का विस्तार भी। मैं ऐसे विस्तार चाहता हूं जो समुद्र के समान अथाह हो और अनंत आकाश के समान सीमाहीन। हम विश्व के किसी भी देश की भांति उदार विचार वाले हों, पर साथ ही अपनी परंपराओं के प्रति उतने ही सच्चे संरक्षणशील भी हों जितना केवल एक हिंदू ही रह सकता है। हमें पश्चिम से उसकी कलाओं और भौतिक विज्ञानों की शिक्षा लेनी होगी। पश्चिम के विज्ञान की सहायता से भूमि को खोदो और अनाज उत्पन्न करो, पर दूसरों की दास्ता करते हुए नहीं, बल्कि पाश्चात्य विज्ञान के सहयोग से अपनी भुजाओं के बल पर उत्पादन के नए तरीकों का आविष्कार करके।
1: गरीबी की समस्या हल करने के लिए स्वामी जी ने अगला उपाय बताया, नए व्यवसाय खोलना। वे कहते हैं,
2: हम मूर्खों के समान बाह्य सभ्यता के विरुद्ध आवाजें उठाते हैं, और उठाएं क्यों ना, अंगूर खट्टे जो हैं। बाह्य सभ्यता जरूरी है, यही नहीं ये भी आवश्यक है कि हम जरूरत से अधिक और दूसरी वस्तुओं का भी उपयोग करें जिससे गरीबों के लिए नए व्यवसाय खोल सके। भौतिक सभ्यता ही क्यों, ऐशो आराम भी जरूरी है ताकि गरीबों को काम मिल सके।
0: स्वामी जी ने हमें बताया है कि भारत के आर्थिक जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण यहां असीम आर्थिक प्रगति हो सकती है। जैसे भारत के गरीब दूसरे देशों की तुलना में अच्छे हैं, भारतीय आत्मा की शक्ति में विश्वास करते हैं, जबकि पश्चिम के लोग भुजाओं की शक्ति में। भारत में प्रचुर प्राकृतिक साधन पाए जाते हैं।
2: मैं गरीब हूं, गरीबों से प्यार करता हूं। मैं अमेरिका के गरीब कहलाने वाले लोगों को देख रहा हूं, उनकी व्यवस्था मेरे देश के गरीबों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। तो भी उनके लिए अमेरिका के न जाने कितने हृदय रोते हैं, और हमारे देश में वहां के सदा से 20 कोटि स्त्री पुरुषों के लिए भला किसका हृदय रोता है? उनकी मुक्ति का क्या उपाय है? कौन रोता है उनके लिए? वे अंधकार से प्रकाश में नहीं आ पाते, उन्हें शिक्षा नहीं मिल सकती, कौन उन्हें आलोक दिखाएगा?
1: उन्होंने और भी कहा है,
2: जब मैं पश्चिमी देशों में था तो जगन माता से प्रार्थना किया करता था, मां यहां के लोग फूलों की सेज पर सोते हैं, भांति भांति के उत्तमोत्तम भोजन करते हैं, और कोई ऐसा सुख नहीं है जो वे नहीं भोगते, जबकि मेरे देश के लोग भूखों मर रहे हैं। अंबे, क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? पश्चिम में जाकर धर्म का प्रचार करने का एक कारण मेरा यह भी था कि मैं अपने देश भाइयों के पेट भरने का कोई उपाय ढूंढना चाहता था।
1: स्वामी जी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आस्थावान थे। वे कहते थे, भावी भारत अतीत के भारत की पुनरावृत्ति नहीं होगा। वे कहते हैं,
2: कोई अपने ग्रंथों के भारत को, अपने अध्ययन और सपनों के भारत को पुनः देखने की इच्छा भले ही कर सकता है, पर मेरी आशा फिर से उस भारत को देखने की है जिसके अतीत की विशेषताएं इस युग की विशेषताओं के द्वारा विशेष रूप से संवर्धित हुई है। भविष्य का भारत अतीत के भारत की अपेक्षा अनंत गुना महिमान्वित तो होने वाला है। अद्भुत गौरवशाली भावी भारत आने वाला है। मुझे निश्चय है कि वो आ रहा है, वो महत्तर भारत जैसा वो पहले कभी नहीं था।
1: विवेकानंद के भाषण और लेख उस लक्ष्य की प्राप्ति के अमूल्य सुझावों से भरे पड़े हैं। और यदि हम अपने सपनों में संजोए हुए भविष्य के महान भारत को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने महिमान्वित सत्य के रूप में साकार करना चाहते हैं, तो स्वामी जी के सुझावों के अनुसार हमें कार्य करने होंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

10 बज चुके हैं। आज का प्रसारण बस यहीं तक, आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को दीजिए अनुमति। जय हिंद।